मकलमथेल के थरुम क्या संदोक तो नेता हंजरी वासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दिगनी हौजी पुंफा मसीदा पूदने लाक्चरी सीधे ही दा ngasi gi sida hidakta khangmi nashi nim gi kanaba sijina gada basaruk singdi nim gi maku maragi maku mahi mapal mana maru kanaba sing khangmi nashi maku di khai pangal happy amashung mana di mit kanaraba hidakti makal makhayamba chaba tumbada fahali mai kalali तिल सिहली हकचांगी हु मांगहली उनसागी लेना मांगहली महीदी मांगथोखली हाइफेट साय नुंगशंग फहली तिल दातु मशुंग इसिंग मरी फतबा फहली मणिपुरडा निमकलहुम फंगी मधुदी निमपांबी अचौबा तारेल मानबा अमा अमसुंग तारेल की मरु मानबा मानना पानबा सैजराकी मतोगुम पांबी चौगदबा मही मतुम ताबा अमा महानीम कौब जात अमा अदुगा सैजराकुमना मरु पानबा सैजाकतगीदी खर पिकपा जात अमा मधुना जंगली निम हाइन खंगे हिदा कोइना सिनबदा मनादु इसिंग मतिक चाना हापलगा मचु नापु मानसन्ना फुटलगा अपाटपा चपाटपा अपोमबा फुग्री लाइथुंग अपोम अतंग पुंबदा चांब काने मना सुंबा तोलाहुम चेंग नत्रगा अतागियाम तोलाहुम इशिंग खरा हाप्तुना थिलगा फोर्टिस सेम लगा अपोमबा अपाटपा चफाटपा नचिंबदा थोंब काने अपोमबदी थून मुंदुना पोखायरकनी निम्मपाल हवाईगा निंगथी न थोंगदुना चारगा चानिंग थनिंगदबा साफम हनबा फहली मसीनी ngasi gi sidai dakta nim pambigi kanaba

ब्रजवासी मयूम बिद्यानिधि शर्मन सकप दशेंद्र ओनामना सैरेंग लाइसोलीसेमा ताविरी मखल मथेल की थरुम क्या संदोक्तुन तहनजरीबासी आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल दिगनी हौजे पुम्फमसीद पुदुन लाचरी तोान तोानब सैसक्पिंगी मणिपुरी मतमीशई खुदल के हमद तामीन से सेप्टेम्बर था इंग लिंग चमापल मरीफू तरत थासी इसयुना संदोखी विषयनी इसई इसी खुदल तमजरी तामिनसी

0: 그래다.
1: 레이 하이도 오이.
2: 하이도 님들 또. 아이쇼 흥미로이.
1: 흥님들가 또 오나. 아이쇼 성공 캘피자로.
2: 하. 그다 이제 키에. 그다 왜기 키에노 하지 뭐.
1: 이마 바붕. 아두가 뭐이 다소 비자기. 누가 이거 봐와 뭐 숫담게 하이드는네. 키에 하우리 봐.
2: 아두디. 레마. 성공 키에도. 브라보 때부터로 이 짜닝 맨날 뛰는 시월에
1: 비자로 예 바우스 땀나로
2: 레마야 능지디네 아이니 파기더로 짜는이 때라우이 시 능네 땀닝이 바우도 쇼 개념 없다 하이지 아무도 하이오 봐
1: 아도 보라 또 맨날 하이기네 시 나꿍도 낚실로 봐
2: 아이니
1: 또 맨날
2: 하이런지
1: 아도 보라 아이도 저 때 맨날 나도 강가보라
2: 하 아이 뭐 봐, 왜 들어봐? 렘마, 난 난가 시댁이네. 아와부터 보, 아마도 떠오르야 되리. 난가 떠오르부터 보, 그들 먹네. 아이 놀 떠오르더니 그 시댁.
1: 아이기 피수, 뭐 따져오나?
2: 마도 마디 난가 좀 떠오. 미이마 망대파자 뒤에봐.
3: 이보소 봐.
2: 말아.
3: 이마 까이노 노예니나 파자 파자 다바나 하이나리버도 봐.
2: 이마. 레이마이 바니 카이노 무슨 타나름보
3: 오 카리노바 노이나 타나름보 이마즈니야 노이가 와 마타나니니 나파다 하이로바다디 타오이와 오이나 타비드레보 리세이나 깐게둠 하이레 노이야니나니야 이마기 아빠바세모 테디 통할루샤사
4: 하이 하이 하이 아이나네 리세이나 깐게더로 깐드립도 마두 낭 나라이보
3: 파르미코 나파나 하이리지타레드나 와 마타네 पजाना है ना बताना बामा तैयारी महाभार के बीमार दुनो ओलक प्रखंड देने नुमी चुप्पगी लिसाई है म पायरगा फूगेगा थोंगेगा सही मता अंशिगा
4: सही मता अंशिदा नाते ज्यादा बुवा है रब देने फूकता बा कंगरा
1: इमान पांबीरी सिबु करीनो इमा
3: इमाओ बीमा कशुले बुवा बुदी नाते दा पशासु कयाम ना बुदी संगनी गे ने इसानो पाने इंजीनियर ने इमो उसु कॉलेज की ओजानी
2: अदु इमा की दमक ता कोई लेरी अब इमा या पाम हेता है बियो
3: हो अदु नीदना इसा जिना अदुम ना हायरा बदे कयाम नुगाय रगे से सिनी दै बोसो पा लेमा
1: इमा
3: नंग सुता कुमसी इंगेन गे निनी पान बा कांग जो क दोरे दना
2: अदु इमा कांग मन द कै जो के हारि नीमा
1: इमा सु कांग की खुबाई से योबी के हाय ब्रो योबी ओ नमो लोइन सिंजगे इमागि सैतम बिनाबा आफाबो ओजासु थिरुगे
4: आ गाकों गाको इमो बेमा से आमतंगाय खो नमाने इसे शकपा इसे योजा थिबलाइली को से नमान करी पामी बैदो नमागि वादो मदु मखां
3: आ मोइबा सियोर दिने मोइबा मक्त यावबि रगिनु इसागे मोगो दाइना थोकपा दो मंग नजरगे
4: होय होय होय या या या अदुने आइ नोय वारी सिताब दियाय को हाँ, हाँ ना रो, हाँ
3: ना, बीमा, इमान हाई दौड़ी से, मणिपुर डले रगा, खुबाई से योगी हाई बनना तियाई बा,
1: इमा,
3: आ पुरी डले बने, जगनाथ खेत रगी कांगसिंग मधु, इमा योंगनिंग आई बा, इबुंगोगी मांग दने, जगोया मुक तथोनिंग इमा, इमा गिया पाम बसे, इबोसो बनो ये निना मुक तदी थोंगलु आई बा,
2: इमा मधुबु खंग देने नाते गय चादो मान दे
4: ए गांगनो गांगनो गांगनो ना चा सिंग या नब गांगनो आइ सुम ताके को
3: इबो चो बा नंग जो नापा दो न लिक्सिन ब सेन बुथो निंग द बाउ रो ब्रो ना
2: इमा अदि वान ति बा
3: ए अदु दि करी गिनो हा अदु दि करी गिनो हाय बा आइ न दि इसा इमो ऑफिसर नि मिया म मांग द लेने गे दना खाली बसि दि नोइन थुंगन मंगम लरो सि नत्रो नोशन पुथो मिंद्र बनत्रा बा फै फै फै समा काय थोगने आइ पुरी सके आइ पुरी सके
1: आइ खोइन ने सेल पुथो लिंग दबगी वाना ति इमा
3: हाय मधु नत्र दि करी गिनो हा मधु नत्र दि करी गिनो बा हायुने हायुने नोइन सेन पामु बनत्र ग दि करी गिनो हाय बा आइबु सही खुदिंग पुरी द कांग याव बसत्रे न नुई द हाइग्रब रायबा कुम सीसी दबु पुमिंग या पामबा मलई बदगी हाइरि बने बाई
4: ओ नंगी सिदिए पुरी गी कांग सिंग ब येंग बन तबा तो पानिंग बा पाम बम सिले
3: आ ले ले ले याम ले ग्रजानी मोय बाबा इबु नोगी म फम द संगजग दबा हाइजग दबा याम ले ग्रजानी जगत की मरोल हु उरी ब इबु ओदो महाक तन आइगी पाम बा अनिंग ब थुमन ग

0: मकल मथिल की थरुम क्या संदोक्त ने तहन जरीबा सी आकाशवाणी इम्फाल की मेगा हर शाम हम दसमीक मंगा दशंदुक चरीबा FM संगाई चैनल दिगिनी आकाशवाणी इम्फाल हुजी अयू की पुंग तरेन मखाई तारी मणिपुरी त पाओ ताबीरसी
1: आकस वानी इम्फाल वहिंग बम वाशिंगटन पाउ पाजरी अहान बदा मरोई बपाउ केंद्र की आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव यादव नशी आयुक इम्फाल थुंग लेरगनी मेट डिपार्टमेंट हाइरी राज्य सिदा लाकलेब निमित निनी सिदा अखाक राव याउन नोंचुगनी अमशुंग सरकार न हाइरी सही असी की अक्टोबर अमदगी सब्सिडाइज डोमेस्टिक LPG रिफिल तौबदा बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन सुंगसोई छोईदन चंगलगनी केंद्र की आयुष हक्सेल यायफयुम्बल राज्य मंत्री प्रताप राव यादव इम्फाल थुंगलरगनी इम्फाल थुंगलरब अयुक पुंग तरा माथोई मखाई इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर पांथोक्पा थौरम सरुक यागनी मंत्रीना इम्फाल पांथोक्लिबा गणेश उत्सव की थौरम सरुक यागनी नुंथिल पुंग अनीदा इम्फाल की रिम्स हॉस्पिटल चतुना नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट की मीफम यावगनी तुंगदा बाबूपारा लेब शिवसेना की ऑफिस चतकनी स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया साई नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर इम्फाल सिंधुना संडे ऑन साइकल विथ मीडिया फॉर फिटनेस थौरम होजिक साई इम्फाल की ऑल MP हॉल पांथोकली थौरम आकाशवाणी इम्फाल की डायरेक्टर नोमाइथेम नंदकुमार यावना अतै स्टाफ सिंसु सरुक यारी मीतई मैतई ट्राइब यूनियन सिंधुना मापल सुबा सेवरेंस डे ऑब्जर्वेंस लिसंगनी कुंतरुक नसी इम्फाल पांथोकलगनी थौरम मणिपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट डॉक्टर बसुदेव सिंह यावगनी सेवा परखोरा कैंपेन की सरुक ओइना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रानी गाइडेन लियू वीमेन मार्केट लमटू सेंदोक्रे थौरम माई भारत तमेंगलोंग फन स्काउट तमेंगलोंग तमेंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वॉइसेस अनविल पुन्ना खुसम सिंखी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इम्फाल सेंटर हाइरी राज्य की चिंग तंपा की जिला पुनमक लाकलीब निमित निनी अखाक अराव याउन नोंचुगनी IMD हाई आंध्र प्रदेश की समुद्र खोंबान कर्नाटक केरला माहे तमिलनाडु तेलंगाना अंडमान निकोबर इतंगी अकनब नोंचुगनी मयाई थंब महाराष्ट्र उड़ीसा कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल लाकलीब निमित निनी अखाक अराव नोंचुगनी गा फाब मियो हयेंग फाउबदी समुद्र गा फाब चत्तनब खंगनख्रे ताबीब पाव असी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी सरकार हाइरी सही असी की अक्टोबर अमदगी सब्सिडाइज तौरबा डोमेस्टिक LPG रिफिल तौबदा बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन सुंसोई सोईदन चंगलगनी पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्रालय चेरोल हाई सब्सिडी लोनना रेगुलेटेड रेटिंग सेलिंग प्राइस RSP दा गैस लौनबगीदम बुक तौबदा डोमेस्टिक LPG कंजुमर सिंगी मपुंग फारबा बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन दरकार लेरगनी मसी तसेंग तसेंग सब्सिडाइज रेट LPG फंफम थोकलब कंजुमर सिंदा

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद

0: इनऑपरेटिव हो गया होगा।
1: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
2: कहाँ?
1: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गीत खुदोगे निशुबदा तामिनसी राहत फतेह अली खान आशीष कौर मदी तानिश बख्शी की अपुन बकौन जल्दा गीतमा

हजार बार सोचा कह दूं कि फ्रेंड नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है तू, पर सपने टूट जाने का डर कभी

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो लेडीज की थोरम द तराम नो उच्चरी मिंग ले फ्रॉम हाई बियू
1: हेलो
0: हेलो ताबी रबा
1: ओ ताजे ही ताजे ही
0: अहम अदों की मिंग ले फ्रॉम हाई बियू
1: ओ ओ आई लॉन्ग सम दे ने वाई कॉम प्रमो
0: अहम प्रमो से कोई की थोरम सिंह दहाने सरुग या बिरखर ब्रो
1: अमुक या जगह
0: अमुक से हेलो लेडीज तो उबिदो रा नत्रग गुड आफ्टरनून लेडीज ता रा नत्रग गोई इसै खन बगी थोरम सिंग द उबिरो ब
1: ओ नते छिगी द छिगी कनो गिजि
0: हाय हाय
1: इबा याम गिजि द इमा
0: हाय दे दिङ असि थोरम सरु गया बिरक बा हाय बिउ करी वा फम थम्बिनि करी हाय बि ब प्रमो एङा
1: छिग अनि द इमा जे छुम तो गेरो पनि द
0: हाय अदु फोन दो बिरक पसे करी करी वाफम दि फोंदो पिनि
1: मा देगी करी करी जाम नु आय न छुम आय जगे न मे दा मोय द छुम तो गेर पनि
0: कहि संदक छरी ब थोरम सिंग नुङाइ न ताबि रम्बा पुकनिंग द दुकिमेटिक पेन जब पुक चाहिए का करम करम ब थोरम सिंग न दि हे न ताबि गे
1: ए आय आय दि ड्रामा गुम्बा देगी लीला देगी इसै ओर जो अरि अरि बछक पदो अदु मन नुङाइ ताजै
0: হয় হরেন সু আই পুং বারোগ মিনিট তারা রেডিও লীলা সৈদম কি সন্দোকচগান সৈদিন তাবি থামচারি আতোপ সিংদি কী আতোপ ওফম থাম

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो लेडीज की थोरम ने तरह नोक चरी मिंग ले फम हाई बियो
1: हेलो
0: हेलो ताबी रबा
1: हेलो
0: हेलो
1: ताबी
0: हेलो

0: तक तगे निंग थोरेल कयाद गे यातना थमलक लबलम खई अमुक न होना मणिपुर की मरमदा करी सुखंग दबन खोइना लम खई सेमदोक न बलोंग जम्बरोमा मेजर द ताकली
1: यस मेजर जनरल
0: लोंग जम्बरोमा दे वचो इंगंग दे यारोई दबदा यानी हाय दे नमलोई दबदा नंगने हाय न कक्कुम दे
1: जनरल रोमा यम सॉरी ऐ कोई अचुम्बोआ यम नांगले न कोई लान खले गुली पीव यादरे ऐ कोई चक्कनी गमेंट इम्पोम ठोगन
0: वापम मदो इंगों द हाय के दबन नते रोमा ऐ ये थमोई द नोकले शिलोन मापन क्वेश्चन दन ले जब शिंगले पागपो न कोई न थोई उसी तब उठले
1: मणिपुर दरबार बाउंड्री सर्वे पाउंड्री ब्रिटिश सरकार न अचुंबा बाउंड्री लाइन न बहुत नरे जनरल कुली सप्लाई तोड़ दे बाउंड्री सर्वे लेपले
0: हाँ साहेब न कोई द पीन व कुली रोमा न लोई नरकते
1: व्हाट
0: अदुगा ब्रिटिश साहेब की दमक यक्का येंग दुना नुंज दुना चक्का दबस उन्नते
1: जनरल साहेब
0: लाइपाक पाम ने गाओ रबा साम्राज्यवादी अंग्रेज सिंह ना कोई महुम्दा सही न थिन बगुम थले जनरल लोंगजम रोमा ना इमालय पाक कंगे पाक की दमक कुंपम सेट लेपली
1: जनरल
0: साहेब न कोई न यक थोक लिबा मैं या थोक लिबा बाउंड्री दे युम्पम ओयरगा मणिपुर के लंकई नुंगले जरीबा कुन्शिंगो खतो लगा सर्वे ताऊनबा होनबा अधुगा मधुदा संग दब कुली पीबा लंग यम्मरो मामे जोर ले रिमा कई दे ओय थोक तबने लंकई नुंगले जरीबा कुल्शिंगो तक थोक लगा अनोबा बाउंड्री या थोक पदी लायर दना समना म पहिये में की लम हंजल लग प्यारोय
1: जनरल
0: मबुक पहि पुक्चेल चाउ यहाँ इनबा आई शालुक पो मिंगों द पीछे कदरा मरुप म पांग ने हाय दना आई लंबू मिंगों द लांथोक कदरा मशी के मिरोल ना हायेंगे मिरोल की दमक लेबलम बताए मशी लोंगजंबरो माँ मेजोर ना हाय रे इमाले पाक की दमक एक कोई थोंगा फना लेबलम बताए इमाले पाक की दमक तो वही कटोक बताए श्रीजत चना यथंग पंगल बदे कोंपम मम होंग द नमनी पुरुषना कई पाक की दमक नंखे ये अरे पशक्तम की दमक लान तोगनी
1: जनरल रोमा करी हाय रे व्हाट यू से आई मीन वार करी हाय रे व्हाट यू से

नमस्कार कुरुमजरी, मैं निंगथो कुंजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों आज गीतमाला में आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत धमाका। तो सुना जाए आज का ये पहला गीत, भारतीय इंडी बैंड लास्ट मिनट इंडिया का गाना अब मैं क्या करूं, जो प्यार, अपनों को खोने के डर और बेहद संवेदनशील भावना पर आधारित एक भावुक गीत है।

दोस्तों अगला गीत आप सुनेंगे अरूप खान द्वारा गाया गया बहते जाना है। राणा सोटल का लिखा हुआ और रजत नागपाल का संगीत।

दोस्तों अगला गीत है बरसात लगती है। मशहूर गायक दर्शन रावल का एक बेहद ही खूबसूरत और रोमांटिक मॉनसून ट्रैक है। उनके साथ है सिमरन चौधरी। आपको बता दें दोस्तों कि यह गाना दर्शन रावल के मशहूर सालाना मॉनसून गानों की लिस्ट का 12वां गाना है, जिसे उनके फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं।

सुना जाए ये गीत जिसे शब्द रचना और संगीत और अपनी आवाज दी है नवजोत आहूजा ने, और गीत का नाम है खत।

सुना जाए इंडी म्यूजिक बैंड खोसला रघु का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है मिले जो सुकून, जो उनके एल्बम आरजू का दूसरा ट्रैक है।

दोस्तों अब सुना जाए 1999 की फिल्म मस्त का एक गीत सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाजों में, नितिन रायकर का लिखा हुआ और संदीप चौटा का संगीत।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक मलयालम पॉप और इंडी म्यूजिक का एक बहुत बड़ा हिट गाना है कल्याणी। सुना जाए श्रेया घोषाल, ARJN, KDS 54 और RONN की आवाज़ों में।

0: ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯌꯨꯁ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯇꯥꯞ ꯔꯥꯎ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯅꯦꯁ ꯄꯨꯖꯥꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯅꯥꯠ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯒꯅꯦꯁ ꯄꯨꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯁꯥꯒꯠꯍꯟꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯕꯣꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯡꯒꯤꯂꯥ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯒꯅꯦꯁ ꯄꯨꯖꯥ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯇꯥꯞ ꯔꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯕ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯄꯊꯥꯞ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯇꯥꯞ ꯔꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ
1: ईशान सेतु ट्रस्ट दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी ने मणिपुर में एक सिद्ध विनायक गणेश मंदिर की स्थापना की घोषणा की थी। आने वाले समय में यह मंदिर श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनने के साथ साथ महाराष्ट्र और मणिपुर के बीच सांस्कृतिक एवं भावनात्मक संबंधों का एक सुंदर प्रतीक बन सकता है। यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए दोनों क्षेत्रों के बीच आत्मीय संबंधों को और मजबूत करेगी।
0: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟ ꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯒꯅꯦꯁ ꯄꯨꯖꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯁꯥꯒꯠꯍꯜꯂꯤ ꯖꯥꯠ ꯕꯤꯖꯥꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟ ꯗꯥꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ MLA ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯖꯣꯏ ꯀꯤꯁꯟ BJP ꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯊꯧꯄꯨꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯨꯡꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯕꯥꯕꯨꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯗꯣꯜꯒꯤ ꯀꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ CRPF ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯖꯤꯂꯥꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ WY ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ 2 ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯆꯍꯨꯝ ꯔꯣꯝꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯒꯣꯜꯄꯔꯥꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯕꯣꯂꯦꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯜ ꯈꯔꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯆꯠꯊꯅꯕꯒꯤꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯅ RPF PLA ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯏꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ 10ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯒꯦꯠ ꯅꯝꯕꯔ 1 NRFM ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯁꯀꯤ ꯑꯟꯇꯔꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯩꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯈꯪꯍꯩꯁꯤꯡ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯁꯁꯤꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ 13ꯇꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯪꯍꯩꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯥꯏꯖꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯪꯀꯜꯞ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯆꯍꯤ 40 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯕ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯏ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 13 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯑꯥꯏꯆꯤ ꯅꯒꯣꯏ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯒꯦꯝꯁꯇ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ 10ꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯂꯥ ꯚꯣꯅꯤꯟ ꯕꯂꯥꯕꯤꯔꯅ ꯂꯨꯄꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯂꯧꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ 10ꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯏꯚꯦꯟꯇꯁꯨ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯂꯨꯄꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯐꯪꯈꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯂꯧꯔꯛꯂꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯗ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ

0: 앙앙이 더우람 따비레이.
1: 거기에 인테잠.
2: 기스카? 구디키 피스카.
3: 디카? 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है? ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।

0: RBI कहता है
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
2: मखल मथिल की थोरम के याना लेटिंग उइदुना संदूक चरीबा अदोंगी दमकनी आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल

0: अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल सभागार से आपको पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए उपस्थित हैं। आज समापन समारोह में भारत की माननीय

0: शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमती बी वी नागरत्ना जी और भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी।
1: Bharat has once again shown the world what it means to move towards a sustainable and a developed world while keeping our roots intact, while keeping the environment as our priority and making sure that we leave a better world for the future. Having fulfilled her promise made at the Paris Climate Summit way before the set timeline, India has become one of the select few nations to show the world a model of nation building where environment protection and ecological balance is at the core of policy making and executive actions.
0: इस दो दिन के सम्मेलन में विश्व भर के 70 देशों के न्यायविद, शिक्षाविद, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ और अन्य हितधारकों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी और एशियाई विकास बैंक एडीबी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। इस पूरे आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा किया गया है। इस पूरे आयोजन को, जो भारत का एक विशिष्ट वैधानिक निकाय है, और इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी।
1: And now, Chairperson, Honorable Justice, Shri Prakash Srivastava ji will felicitate the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu.
2: प्रगति की जड़ें प्रकृति में गहरी होंगी। We also would like to welcome our Honorable Minister, sir, welcoming Shri Manohar Lal ji, Mananiya Kendriya Awasan Evam Shahri Karya Mantri Tatha Urja Mantri, Shahri Vikas, Adharbhut Sanrachna aur Urja, in tino ke sangam par unka netritva Bharat ki satat evam samaveshi vikas yatra ka ek mahatvapurn आधार है।
0: और स्वागत हो रहा है माननीय आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी का।
2: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हिज प्रेजेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रिंग्स द विजडम ऑफ आवर हाईएस्ट जुडिशियरी टू द इवॉल्विंग डिस्कोर्स ऑफ एनवायरनमेंट।
1: ऑनरेबल श्री जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, चेयरपर्सन एनजीटी, नाउ वेलकमिंग Honorable Srimati Justice B.V. Nagaratna, Judge, Supreme Court of India.
2: Solicitor General of India.
1: And now, the Honorable Sri Justice Prakash Srivastava ji will felicitate the Honorable Learned Solicitor General of India, Sri Tushar Mehta ji.
2: Jurisprudence to this important dialogue. Thank you, Honorable Chairperson. And now, ladies and gentlemen, as we open the dialogue with our distinguished dignitaries on the dais, may I first request Shri Tushar Mehta ji, Honorable Solicitor General of India, to kindly address the gathering.
0: Budhan, ab sambodhan Bharat ke Solicitor General Shri Tushar Mehta ji ka.
3: Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. Honorable Srimati Justice B.V. Nagaratna ji, the Honorable Judge, Supreme Court of India, Shri Manohar Lal ji, Union Minister for Housing and Urban Affairs and Minister for Power, Shri Justice Pankaj Srivastava ji, Chairperson, National Green Tribunal, the Honorable Chief Justices of various High Courts, the Honorable Judges, the distinguished jurists, my fellow advocates and friends. It's indeed a privilege and an honor to address the valedictory session of this important international conference on the future of environment and climate dynamics. Over the last 2 days, this conference has brought together distinguished voices from different jurisdictions and different disciplines. The deliberations remind us that environmental challenges can no longer be addressed by one institution or one discipline alone. They require a combined wisdom of law, governance, science, economics, and more particularly the involvement of the society. Climate change is no longer a distant concern. It's a present reality. It affects our air, our water, our forest, our biodiversity, our cities, our agricultural system, and ultimately the dignity and quality of human and other

0: और जिस तरह से ये सम्मेलन हुआ, यहाँ पर दो दिन के सम्मेलन में 17 देशों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अब इस समय यहाँ पर स्मारिका का विमोचन होने जा रहा है और हमारे सभी जो गणमान्य अतिथिगण हैं वो खड़े हो गए हैं और स्मारिका को भेंट कर रहे हैं इस समय.
1: श्री मनोहर लाल, the Honorable Union Minister, releasing the souvenir of the National Green Tribunal and presenting the first copy to the Honorable President Srimati Draupadi Murmu. A commitment by India for the future of the world, of bringing every aspect together, of bringing diplomats, researchers, scientists, scholars together for the fact that the future of humanity shall be shared. Now, the time has come for the speech by Honorable Minister Sri Manohar Lal Ji, the Honorable Minister of Housing and Urban Affairs and Minister of Power. Sri Manohar Lal Ji will now address this August gathering.
2: विकसित भारत का संकल्प भी. तो माननीय मंत्री जी के विचारों को आमंत्रित करते हैं और मैं आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ पावर.
3: महामहिम राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जस्टिस श्रीमती बीवी नागरत्ना जी, माननीय न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माननीय अध्यक्ष श्री तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट, देश विदेश से पधारे हुए डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, एक्सपर्ट्स एंड डिग्निटरीज, देवी और सज्जनों नमस्कार. मुझे लगता है कि आज बहुत सही समय पर मुझे इस कॉन्फ्रेंस में आने का अवसर मिला है. आज ही मैं अमेरिका से लौटा हूं, जहां ह्यूस्टन में G20 एनर्जी अबंडेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला. वहां भी हमारी चर्चा के केंद्र में यही प्रश्न था कि दुनिया की बढ़ती ऊर्जा और विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए हम एक ऐसा फ्यूचर कैसे बनाएं जो सिक्योर, अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल हो. और मैं धन्यवाद देता हूँ NGT के सभी साथियों को जिन्होंने इस दो दिवसीय चिंतन कार्यशाला का आयोजन किया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन आज केवल चिंता का विषय नहीं है बल्कि चिंतन का विषय है. और जब हम किसी चीज़ की चिंता से निकलकर उस पर चिंता करने लगते हैं तो समस्या का समाधान जरूर निकलता है. साथियों, ये वह क्षण है जब जलवायु परिवर्तन केवल एक वैज्ञानिक परिकल्पना से निकलकर सार्वजनिक और राजनीतिक चेतना का विषय बन गया है. और आज इस कॉन्फ्रेंस के समापन पर जहां द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स थीम पर पिछले दो दिनों से विचार विमर्श हुआ है, मुझे विश्वास है कि उसमें भी यही भावना प्रमुखता से सामने आई होगी. हमारे लिए ये गर्व की बात है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के साथ ही भारत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद डेडिकेटेड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश और पहला डेवलपिंग कंट्री बन गया है. ये हमारी उस पुरानी सोच का आधुनिक इंस्टीट्यूशनल रूप है जिसमें मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को महत्व दिया गया है. साथियों, भारत आज तेज गति से विकास और बदलाव के दौर से गुजर रहा है. हमारी इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है, एनर्जी की जरूरतें बढ़ रही हैं और साथ ही हमारे शहर भी तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में हमारे सामने चुनौती केवल बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का नहीं है बल्कि उन्हें इस तरह पूरा करने की है कि विकास की गति भी बनी रहे और पर्यावरण के साथ संतुलन भी. पावर तथा हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स दोनों मिनिस्ट्रीज की जिम्मेवारी

0: संभालते हुए मैं इस चुनौती को बहुत करीब से देखता हूं। जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं, हमारी बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है। मई में लगातार 4 दिन तक बिजली की मांग ने नए रिकॉर्ड बनाए और इस वर्ष 21 मई को यह सर्वकालिक उच्चतम स्तर अर्थात 270.82 गीगावाट तक पहुंच गई थी। बढ़ते हुए भारत को अधिक बिजली चाहिए, अधिक आवास चाहिए, बेहतर मोबिलिटी, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। साथियों, एनर्जी सेक्टर में हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगस्त 2026 तक हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 304 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। इसमें सोलर एनर्जी अकेले लगभग 168 गीगावाट है। आज हमारी इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी का लगभग 55% नॉन फॉसिल सोर्सेज से है और इसमें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही भारत ने रिकॉर्ड 44.6 गीगावाट सोलर और लगभग 6 गीगावाट विंड कैपेसिटी जोड़ी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पावर सेक्टर में 50% नॉन फॉसिल सोर्सेज की हिस्सेदारी का जो लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का संकल्प लिया था, उसे जून 2025 में 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है और हमारी संस्कृति भी। अब इसी सोच को हम अपने शहरों के विस्तार और विकास में भी आगे बढ़ा रहे हैं। भारत तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। आज हम जो शहर बना रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा। हम आगे शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए अभी अर्बन चैलेंज फंड लेकर आए हैं। अमृत 2.0 के माध्यम से हम शहरों में वाटर सिक्योरिटी और सीवेज सिस्टम्स को मजबूत कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी हमारे अर्बन डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज देश के 29 शहरों में मेट्रो और RRTS ऑपरेशनल या अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें लगभग 1170 किलोमीटर नेटवर्क ऑपरेशनल हो चुका है और करीब 1013 किलोमीटर निर्माणाधीन है। आज हम मेट्रो के, जहाँ तक विषय है, दुनिया के तीसरे बड़े देश में आ चुके हैं। हमारे से पहले केवल चाइना और USA है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले 2 वर्ष में हमारा स्थान दूसरा हो जाएगा, हम USA से भी आगे निकलेंगे। इसी के साथ देश में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लगभग 25.5 लाख EVs रजिस्टर्ड हुए और कुल व्हीकल सेल्स में EVs की हिस्सेदारी 8% से अधिक रही है और ये सब हमारे साझा प्रयास और चिंतन का ही परिणाम है। साथियों, आज जब हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो ये केवल एक वैज्ञानिक विषय नहीं रह गया, ये मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। जब तक जलवायु परिवर्तन को केवल वैज्ञानिक दृष्टि से देखते रहेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। जिस दिन हम इसे अपने इतिहास, संस्कृति, संस्कार और जीवन शैली के नजरिए से देखेंगे, हमें इसके समाधान मिलने लगेंगे। साथियों, समस्या जलवायु परिवर्तन की नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की रफ्तार है। जिस रफ्तार से आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस गति से कोई भी जीव उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि परिवर्तन संसार का नियम है। सवाल बस इतना है कि हम इस परिवर्तन की दिशा में अपनी भागीदारी सकारात्मक रखते हैं या नहीं, या नकारात्मक रखते हैं, ये सोच का विषय है। हमारी सकारात्मक भागीदारी केवल पर्यावरण को नहीं बचाएगी बल्कि हमारे भविष्य को भी बचाएगी। आइए इसी भावना के साथ हम विकसित भारत और सस्टेनेबल भारत की ओर आगे बढ़ें। मैं पुनः आप सभी को इस सार्थक और सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं और मुझे आप सभी के बीच आने और इस चर्चा का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: ये थे माननीय आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी। आपने विकास और पर्यावरण के बीच किस तरह से संतुलन किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डाला।
2: Moving towards a developed Bharat, a sustainable Bharat is India. The contribution of the Honorable Supreme Court and the government of India has been immense.

भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, यहाँ उपस्थित सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के सभी जजेस, देश विदेश से आए सभी डिग्निटरीज, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सभी स्वजनों, सभी को नमस्कार। इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न चुनौतियों पर केंद्रित इस आयोजन में अनेक देशों के विशेषज्ञों, न्यायाधीशों, विधि विद्याओं और पर्यावरण के मुद्दे पर सक्रिय प्रमुख स्टेक होल्डर्स की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और उनकी समर्पित टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पर्यावरण से जुड़े लीगल मैटर्स ने एनजीटी में की विशेष भूमिका है। मुझे बताया गया है कि ट्रिब्यूनल ने बहुत बड़ी संख्या में विवादों का त्वरित निपटारा किए हैं। देश में नदियां, एयर क्वालिटी और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े मामलों में ट्रिब्यूनल ने एक प्रभावी कॉम्प्लायंस आर्किटेक्चर विकसित किया है। ये सराहनीय है। ये आयोजन एनजीटी के पर्यावरण से जुड़े विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श करने की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने ये स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है। ये सर्वविदित है कि क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है। क्लाइमेट इम्पैक्ट पहले से अधिक तीव्रता और बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से सामने आ रहा है। फूड सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और आजीविका पर भी क्लाइमेट चेंज गंभीर प्रभाव सामने आ रहा है। ऐसी जटिल और अनिश्चितता चुनौतियों का सुनिश्चित प्रकार से सामना करने के लिए नीतियों और कार्रवाई का एक संगठित ढांचा आवश्यक है। ऐसा व्यवस्था जिसमें केवल सरकारी और कानूनी विशेषज्ञों ही नहीं बल्कि वे समुदाय भी सक्रिय रूप से भागीदार होना चाहिए जिनको क्लाइमेट चेंज सर्वाधिक प्रभावित करता है। ग्रामीणों और वनवासी समाज, छोटे किसान, महिलाएं तथा अन्य वल्नरेबल कम्युनिटीज की आवश्यकताओं के प्रति विशेष संवेदनशीलता आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक प्रभाव उन्हीं को पड़ता है। देवियों और स्वजनों, दुनिया की अधिकतर ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के पास सदियों से संजोया हुआ पारंपरिक ज्ञान हुआ करता है। प्रकृति के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ साथ रेजिलियंस और क्लाइमेट एडप्टेशन उनकी जीवन शैली का हिस्सा होता है। मेरा बचपन सुदूर ग्रामीण अंचल में बीता है। प्रकृति से जुड़कर जीने की जनजातीय समाज की सरलता और रेजिलियंस को मैंने स्वयं अनुभव किया है। अपने बचपन का एक उदाहरण मैं कभी कभी देती हूँ, आज भी तक उसको दोहराना चाहती हूँ। मेरे पिता घर में खाना बनाने के लिए पास के जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाते थे। लकड़ी को जलाने के लायक बनाने के लिए और एक बार उसको घर में उसको कटना पड़ता है। जो उन्हें कटना शुरू करते हैं उसके पहले

0: उसको नमन करते हैं। मैं बहुत बार देखा, मैं छोटी थी तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये तो सूखा है, ये सूखा लकड़ी को क्यों नमन करते हैं। मैं एक दिन पूछा कि पिताजी ये तो सूख गया है, हम इसको जलाने वाले हैं, तुम नमस्कार क्यों करते हो। समझ में आ रहा है कि एक जिंदा पेड़ को काटने से वहाँ से खीर निकलता है और उस वो जिंदा होता है, ये मुझे समझ में था। लेकिन ये सूखे उन्होंने नहीं, आज वो सूख गया फिर भी मेरे हम लोगों के काम में आ रहा है, हम लोगों का सेवा में काम में आ रहा है, जो एक जिंदा था, जो एक जिंदा था वो हवा दे रहा था, हम ऑक्सीजन दे रहा था, अम्लजान हम कहते हैं, अम्लजान दे रहा था। इसके जोड़े, इसके पत्ता, इसके छली को हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे, इसके फूल फल हम खाते थे, इसके पेड़ को हम घर बनाते थे। तो आज वो बूढ़ा हो गया फिर भी हम लोगों का सेवा करता है। इसलिए इससे ही आपको पता चलता है जनजाति के लोग कितने संवेदनशील अपने प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधा के प्रति। पेड़ पौधा अभी मैं प्राइम मिनिस्टर को मेरे गांव लेकर गई थी, उनको ऐसे नहीं कि मैं गांव बहुत सुंदर चलिए देखिए, ऐसे नहीं, जनजाति के लोग कैसे पेड़ पौधा को पूजा करते थे। आज भी हम कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई फोटो हम बनाते नहीं, हम पेड़ पौधा को ही पूजा करते हैं। एक जाहिरा कहा जाता है, वहाँ बहुत सारे पेड़ रहता है, हम साल में जैसे सालों में 12 मास में 50 पर्व होता है, ट्राइबलों का भी होता है, लेकिन वो कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। सामूहिक रूप में गांव के बीच में एक रहता है ऐसे जगह जहाँ पेड़ सूखा पेड़ को नमस्कार करते हैं, और गांव का अंत में जाहिरा रहा है। सभी गांव में जितने भी संथाल गांव हैं वैसे बहुत सारे ट्राइबल, जितने शेड्यूल लिस्ट में, संविधान के शेड्यूल लिस्ट में जितना ट्राइबल सूची में है, जितने ट्राइबल लोग हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ ट्राइबल जिसको हम आदिवासी कहते हैं, आज उसको वनवासी कहते हैं, जनजाति कहते हैं, हम आदिवासी, पहले से हमको सिखाया गया हम आदिवासी हैं, आदिम आदिवासी। तो आज भी जंगलों को पूजा करते हैं, आज भी पेड़ पौधा पूजा करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जी गए थे वहाँ नमन किए, उनका कोई बहुत सारा प्रसाद, बहुत सारे जगजमक की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अरवा चावल और नमन, आज भी वो मानते हैं। तो और ये एक कहानी नहीं है, हम जो 5 एलिमेंट्स कहते हैं उसको पूजा करते हैं, केवल पेड़ को नहीं पूजा करते हैं, धरती को भी पूजा करते हैं, पहाड़ को पूजा करते हैं। आज भी हम लोगों का बड़ा वाला जो ठाकुर जी है वो मारंग गुरु मीन्स सबसे बड़ा पहाड़ के अधिकारी, उसका नाम कोई नहीं है लेकिन हम बड़ा वाला पहाड़ आज भी पूजा करते हैं और धरती को पूजा करते हैं। इसलिए मैं घर पे सबसे बड़ी थी, घर के पास में जो जमीन है, जमीन पिताजी के साथ में जाती थी। पिताजी जब हाल चलाते थे या फावड़ा मारते थे उसके पहले धरती को नमन करते थे। मैंने बोले तुम क्यों करते हो, मैं बार बार मैंने देखा, उन्होंने बोले ये धरती हम लोगों का माँ है, हम जो इसके ऊपर हाल चलाते हैं, हम जो इसके ऊपर हाल चलाते हैं, फावड़ा मारते हैं, हम लोगों के आवश्यकता के हिसाब से हम करते हैं, लेकिन धरती के ऊपर भी अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे कीट, बहुत सारे चीज़ें वहाँ रहते हैं, बस करते हैं। हम लोगों को हाल चलाने से, फावड़ा मारने से उन लोगों का जान चला जाता है। तो इसीलिए मैं धरती माता को नमन करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं आवश्यकता हिसाब से इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। ये विनम्रता की ये भावना हमारी संस्कृति में रची बसी है। ये मनुष्य और प्रकृति के मूलभूत संबंधों को समझदारी से स्वीकार करती है। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं, ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं। मुझे बताया गया है ऋषि मुनि जो कि पेड़ पौधा धरती आकाश जीव जंतु से भी बातें करते हैं करते थे। इसीलिए उस टाइम एक ऋषि कहते हैं जोत्ते, ये तो वेद के वाक्य है, यत्ते भूमे विखनामी क्षिप्रम तदोपि रोहतु। इतने से ऋषि जी कहते हैं, जब पृथ्वी को कहते हैं मैं तुमसे जो कुछ लेता हूँ उसे शीघ्रता से लौटना के लिए लौटाने के लिए प्रयत्न करूँगा। इसलिए हम अभी जिस युग में जीते हैं, मैं जो छोटी थी जंगल गांव से सटा हुआ था, लेकिन आप वो नहीं है। उन दिन भी उसी दिन में भी लोग रहते थे, गांव में रहते थे, लकड़ी आके जलाते थे, लेकिन आज हम पत्ता का बिजनेस, लकड़ी का बिजनेस शुरू किए हैं, जो हमको जिंदगी जीते हैं। मुझे लगता है इसको कम कर देना चाहिए। पत्ता को हम साल भर बार बार तोड़ेंगे तो पेड़ कैसे बढ़ेगा? इसीलिए उसको उसको जीने देंगे तो हम लोगों को भी जीने देंगे, क्योंकि आप साल भर पत्ता तोड़ेंगे तो वह कैसे जिएंगे? क्योंकि हम जानते हैं साइंस, हम वो लोग साइंस के बारे में पता नहीं, लेकिन इतना पता है ये लोग जिएंगे तो हम जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइंस कहते हैं कि पत्ता से और पेड़ के लिए खाना बनाते हैं। तो फिर वो पेड़ को ही बार बार तोड़ा जाए तो पेड़ कैसे बचेगा? आज युग बदल गया है, हम लोगों के पास गैस है, हम लोग गरीब लोगों को भी आज पक्का घर दिया जाता है, तो जंगल क्यों कम होता है? इसीलिए कहते हैं सौ परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, पहले आप परिवर्तन हो जाए तो धरती आपे आप परिवर्तन। ये सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स स्थानीय समुदाय की प्रथाओं और उनके जीवन के अनुभवों की क्लाइमेट अडेप्टेशन की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। हमें ट्रेडिशनल नॉलेज पर आधारित पीपल सेंट्रिक और कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन के माध्यम से क्लाइमेट रेजिलियंस को सुदृढ़ करने के प्रयास करने चाहिए। क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने में सस्टेनेबल अफोर्डेबल की भी अफोर्डेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आज बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट लैंड तो है लेकिन उसमें कोई फॉरेस्ट का नाम निशान नहीं, उसमें फॉरेस्ट की अफोर्डेशन की आवश्यकता है। सस्टेनेबल अपोर्टेशन का वास्तविक लक्ष्य केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि स्वयं और स्वनिर्भर इकोसिस्टम को फिर से स्थापित करना है। डेवलपमेंट को अडेप्टेशन का एक रूप मानना भी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है। विकास के लिए मजबूत हेल्थ सिस्टम और क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता है। एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने और अफोर्डेबल तथा विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता से भी जुड़ा है। रोप टू सोलर पैनल्स उपलब्ध कराने की योजना भारत सरकार की ऐसे ही एक पहल है जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भारत के एनर्जी लैंडस्केप को नया रूप दे रही है। विकासशील देशों को ऐसा मार्ग तय करना चाहिए जो विकास की गति को सुनिश्चित रखते हुए रेजिलेंस बढ़ाए। जिम्मेदार क्लाइमेट एक्शन की प्रतिबद्धताएं देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। ये तकनीकी रूप से फिजिबल भी होने चाहिए। मुझे बताया गया है सम्मेलन में ऐसे अनेक पहलुओं पर चर्चा हुई है। एक और महत्वपूर्ण विषय है आधुनिक विज्ञान और समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को साथ जोड़ना। रिमोट सेंसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिडिक्टिव मॉडल्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे नवीन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल नॉलेज और स्थानीय समुदाय के जीवन अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। ये समन्वय क्लाइमेट विस्टम के ऐसे युग का सूत्रपात कर सकता है जो अधिक प्रभावी क्लाइमेट रेस्पॉन्स का मार्ग प्रशस्त करेगा। देवियों और स्वजनों, भारत की युवा आबादी देश की अत्यंत मूल्यवान संपदा है। युवाओं और जनसाधारण को जोड़कर पर्यावरण चेतना बढ़ाने की दिशा में भारत ने सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत सरकार की मिशन लाइफ पहल ने ये दिखाया है कि जन भागीदारी और कम्युनिटी ओनरशिप के माध्यम से इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए बहुत सार्थक कार्य किए जा सकते हैं। सरकार के कई अन्य पहलों को भी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के प्रभावी कार्यक्रम के रूप में वैश्विक सराहना मिली है। मुझे विश्वास है कि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, न्यायपालिका के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, एक्टिविस्ट और अन्य हितधारकों के इस सभा में अनेक इनोवेटिव दृष्टिकोण सामने आए होंगे और इस मंथन के फलस्वरूप अनेक व्यवहारिक समाधान विकसित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन का समावेशी नीतियों और प्रभावी कार्यों के आधार पर क्लाइमेट रेजिलिएंट सोसाइटीज के निर्माण की दिशा सुनिश्चित करने में योगदान रहेगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। उपयोगी अनुभवों के आदान प्रदान का मंच प्रदान करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विशेष प्रशंसा के पात्र है। मैं आप सभी के प्रयास के माध्यम से सस्टेनेबल और सुनिश्चित भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज राइज।
2: एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथम दैट विल बी प्लेड बाय द राष्ट्रपति भवन मिलिट्री बैंड।

0: जय हिंद।
1: इसी के साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो रहा है और माननीय राष्ट्रपति महोदया मंच से प्रस्थान के लिए तैयार हैं। सभी लोग खड़े होकर उनको अभिवादन कर रहे हैं और धीरे धीरे मंच से प्रस्थान सभी गणमान्य व्यक्तियों का।
2: As the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, highlighted that the soils, rivers, mountains, forests, the five elements are highly revered in our culture. Our country knows how important, how vital these are for our survival. Every Indian should be proud, every citizen should be proud that ancient Indian traditional knowledge systems combine science and values to give the highest regard to nature. As quoted by Sir David Attenborough and included in his speech by Honorable Justice Prakash Srivastavji, the chairperson of NGT, what we do now shall have a profound impact on the next 1,000 years. As stated by Justice Honorable Srimati B.V. Nagaratnaji, Honorable Judge of Supreme Court of India, that we have to learn from the Panchabhutam, from the five elements. From earth, we learn patience and steadiness. From air, broad-mindedness and adaptability. From fire, warmth and energy. From sky, equality. And from water, purity and continuity. Let's hope that all the objectives of the conferences, like the knowledge exchange, like innovation and technology, like policy development, collaborative action and public engagement, all are working together, all work in a better way, for a better future, for a combined future, for all of humanity.
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में न सिर्फ वर्तमान में विश्व के भविष्य में इस गंभीर विषय को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया ताकि इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाया जा सके और हमारी इस पृथ्वी और पर्यावरण को हरा भरा और संतुलित बनाए रखा जा सके जहां तकनीकी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इसी के साथ मैं यहां मौजूद आकाशवाणी की पूरी टीम, तकनीकी सहायता के लिए शिकमन सिंह, सुमित कटियार, नकुल, मोनिका और अभिषेक के साथ ओबी कार्यक्रम प्रभारी श्री जय सिंह और संपूर्ण मार्गदर्शन और समन्वय के लिए श्री प्रमोद कुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं। आइए इसी संकल्प के

0: साथ कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और इस धरती को हरा भरा बनाए रखेंगे। मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं।
1: Future environment and climate dynamics lisengani kuntaru hai behiram da pangthok pa numi dinegi international conference ki validity section delhi degi related da bire thorum san utru tan jari basakas bani falgi sangai channel degi ne sangai channel da huzik lebang ni bisai melantuk seri rubra gri kalpuna sakpani sairing ba konsa bi bocho

0: kaina khangnaki ipui ben kharana barma umangi yaro oi thamin haina koloine aduga ipui ben kharana amu kanglei pak lamdam yorakhi lokta khungban gi yaro oi tangthak nai ba phum thakta kambong manau chindamna harau tayam na lerai sangai koloi mingauna
1: sangai makhong tanap tanap na tongane makhong khujeng sangi phumthak ta chatlingai da khujin longkhum animak masa matom ta phandorei masi sangai na phumthak ta matam kuina lairakpagi oirakhiba saktamni manipur sangai gi mari mata oiriba barma madi thailand da laikhiba singna leipak ta chatpada makhong khujin longkhum phandokte lokta khungban da lairiba sangai gi chinglem na phajaba masak singtharaduna इंग्लिसिंग मचा निपाल हुमबुद्रा निपाल द फोंगबा अल्वान विल्सन गे स्पोर्टियन सर्विसेस इन असम एंड एल्सवेयर मिंथोनबा लाइरिक नहाय
2: मणिपुर गे लोकता खोंगबान गे कुंग न थाना होब नापी मरकत सगाई कोब सजी मखल मथेने ओंथोप न चिंगलेम न फजख यूरोप की रेड डियर गुम न साउ सांगी सजी मखल सिग मकोकत सी मवोंग मान ब मची हवे मखोंग खुजिंग सांगतक तो न फजे खुजिल लोंगुम रबर अमुव मानक कल्ली फुमथक्त चप मतमद मसा मतोम द फंदोई नक्त्रा महाकना फुमथक्त पुथदना चतपद नुंगाइनब महौसा लाइरिन बिना पिबिरप खुदोल ओइर माले अदुगा मणिपुर गि लोकता खोंबान गि सजिसि ब्रह्मा गि थामिन हाइबेदुगा सखमाने मखोइनी मखल अमत ओइरम गद्रा अदुबु ब्रह्मा गि थामिन दि पा तुरियन मपान द गि यामन लाब न सिंगि उमंग दले
3: इंग्लिसिंग मसमापन हुमपुत्रा मरिपुगी मतमदेगी कैबुल लमजाउदा सही खुदिंगे संगाई मसिंग थीबद लोइनरकपा भारत लैंगा के लोशंग मता सेक्रेटरी सु ओइरंबा एम के रंजित सिन्हानसु कनागुंबा मना नुंगसे धान ब मोंपाक मथक दसत पगुंदा फुमथक दसत पाइबसिसु अराइ बनते हायरमी इंग्लिसिंग मसमापन यांखै मंगाता ब्रह्मागे तिनजिन कौवा मनसु मणिपुर गे संगाई अदुगा ब्रह्मागे थामिन अनिगे मरमदा असुमना हायरमे
4: मीटर लिसिंग अहुम हेन वांगबा बर्मागे अराकान चिंगजाव सिंगसांग परेंगसी साकैन लानथोकपो बाबा महौसागे पल्लमनि बर्मागे थामिन न मफमसिगी कुंग थाना हौरिबा उमंग लानथोकपो ओइथोकते अदुना लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप क्रिस्टासेना अराकान द थामिन नम उखी हायबसे मसि नोंपोक पाकिस्तान लोमदगी फौजिलकपा मणिपुर सांगाय ओइगनि
1: कैबुल लमजाउगी मफम पुमनमकता फुमदीगी अपा अथा मानदे मीटर अनी हेन थाब फुमदी अदुगा मीटर अम फाव यौदना अपाब फुमदीगी मफम कयासु लै फुमथक त हौरी ब नापी सिंगी मरु मरा सिंगना लैखागी लैपा कसम नदुना लैतबा फुमदी मफम सुयाउली मीटर अम यौन थादब फुमथक त मपुंग फान चाउरब संगाई लाब सिंगना चटपयादि पुथै संगाई न फुमथक त चटलिङैदा तुंग थंब खोंग न फुमथक त नेतलगा मांगी खोंग न कर थांगट नेत पमाली फुमदी गी तांथादा जगोई शाबगु
0: तारे दन पले संगाई कौबी एखोइना तांग थक नाय ब फुमथक त खोंग थांग अम चोय दना खोंग काप अम फै दना चत पंगमी हाइनरिबा ताइबंग मखोय यवासे मसिमति सही कुमजा कया चुपना लायोय ख्रबई पाई पुसिंगना कैबुली मागी तंपाकता खुदुंग नेट खुमांग काउना चेन चोंगना लेरक पगी पारी पुरी गी साजत ओय मचा ओय बी एखोयना फंगजा होबनी वातना असिगुंबा ताम लबई इपा इपुगी लोनचत एखोय गी खोंथांग एखोय गी साथे एखोय गी मियेंगबो ताइबंगी इबुंगी पासिंगना सिंथा बिदुना जगोय हेबी संगाई कोलोय नबीबा नुसीना संगाई एखोयना कयाद हराउजे
3: मई नवाई तांग सम सही मतम सांगना लोकतक पात सेंथरी बतुरेल इरम खोंगलम मयाम न पुथरक पसैतेक सैरंग अपु मसा सिंगे मथक तनापी होजेंदुना फुंदी सेमलई अवांग मनापी सिंगे सांग ब मरु मरा सिंगना नापी सांगा सिंगे अपु मसा सिंग फाजेंदुना फुंदी थागल हल्ली फुंदी सेमले पोसा सिंगे मरकता सिंगटेक सिंगना उना सिंगना याम याउबना इसिंग मथक तावली फुमदी की मति मगुल खांग्रीबा मितोप मिनो हमना मसी की मथक पुथा दन सतपा अराइबा नते 톡톡 톡 놈리바 품디기 딴 다사나 콩 당하우 들어가디 품디다 부타바 소이디 가라 부타바 하우크라바디 자라자라 쿠 파이글 여위 상하이나 품탁다 하이 싱나 셋바기 마람다 레프넨 카르넨 우드나 하이
2: 마니푸르기 상하이 코바 사지 마칼시기 콩탕 품탁다 시엔바기 마토 아타이 사지가 마나디 야암나 톱톱이 마학기 마앙아마디 뚱탕바 마콩싱나 matam amata da leipak mathak ta sa manana neta ba male mangi khong amadi haksang haiphet thangalaga tunggi khong na leipak ta sat pagum tawi phibam sina makhoina phumthak ta puthadana satpada mateng oi khwaidagi haising ba sadan ba natana phumthak ta saji sigi matung inabanga mo
1: mioi bena sangai gi masak munna khangnarak pa matam da di mahak lokta khongban gi yaro oiramle Assam ki Chief Commissioner ki Principal Assistant Oiramba Lieutenant Percy Il Kauba British Macha Amana English nga machanipal kunthani phugi matamda Manipur de laklaga mafamasigi e paulawi Maakne loktak pata uchekka pagi khongchit kayada loktak khongwan de sangai uki English nga machanipal ni fumathoi me kunmathoi da mahaki dairi nahai
4: ai Assam gi umang de saji makhal kya ukre Sikar su tawkre. Adubo, Manipur da sangai hai na khangnaba achoba saji makhala sigumbadi amukta ukhidri. Mahak atai saji singdagi itop topi yamasu phajai. Manipur tampaki lokta khongban gi phumdi haudi gi narakta natana atai mafamda laiba thengade. Manipur gi lokta khongban gi saji si malem gi akhang ahi ka namta na masak udriba maming thondriba anoba saji makhala ma oigani. Mahaki anoba maming thonduna miyamda phongduk lomge khali. Adubo, Mahak sakmanaba saji makhalamasu awang nongchup bharat ki umangda phangi hainaba tai maduge tangtaba makhangnaba ngai
3: thaina degi sangai phajaba masak matauta miwei banna kalai sahi sa kaya lisang sena sadan basing ki panjaba sa wei rapana sangai gi masing asuma sum hantharaki english sing ma samapan yangkhai gi matamda manipur da sangai leitre sangai gi khongul mutkre haina lautoi
0: Sangai kobi ai khoibu kangnei pak te leitare khungun mut na mang khre amu khana uraroi pau thok piriba taibangi ibungi pasing na khoi gi mi eng swan ban lokta imagi masai gon tau kambong marakta leiri ai khoi nga sisu he taibang pan bagi mapu lengli pali ba pumnamak pu sembi sabiri ba lining thau laibak Hirabi sangai na haijari yaro oibi ai khoi gi tam khrabai pai pusing lokta imagi masai gon tau kambong marakta ke kulo na leiraki ma pari mamom ai khoi su kaibul imagi tampak ta phumdi hanau marakta ingna chikna leijake thaujan biu ko ai khoi bu
1: International Union for Conservation of Nature IUCN gi EPG na luchingba mi kangbuna Manipur da sangai gi khongul lirei lokta khongban gi ashong banarakta sangai khare leirami helicopter gi nil khongba marakta mipai chawbi sangai na thok thok nomba phumthakta chen chongba urubada EPG na sangai bu lovely dancing deer of Manipur haina singtharami Jigi Pauktak Tagi, Manipur Lengak Nakaibulam Jaubu, Sangai Gilei from Oinavasem Gatki.
0: Imagi Langlen, Sangai Kawina Koigi, Laiway Kravei Pai Pusina, Torbung Lam Jaulam Nungsi, Singu Tangzingi Masaikon, Kanglei Jing Kong Jingyada, Hano Shajik Wataba, Jing Kong Iput Kang Daba, Kairil Kajau Yog Daba. Adugumba lamdamda akiya khangleitana harau mathoi karamba nama aina khangawi matamagi khongleida yaro oibi makhoina lokta khongban yorakhi nama aigi tampakta ithakne ipom nariba tangthak naiba phumthakki asongma narak singlakta tumit kaanga yawona sadabana sadauthong tophom khangda matauda wan lenki makhoigi punchi Adugai mom, imom oibi na khoi gi khomlang mayok nariba pari imom kayana aram khaurang khangamda punchi pikham nakiba yeng haidraba mataw

ताखी यारो संगाई द युम्फम ओइबा सक्तम थेंगमन रिंगई अहुम सुबा सरुक नसी की तंगक तताबी क्रे फुमदी की तांथा सक्तम मसीर सरुक याकी बसिंग थाउनाउजम स्यामो राजेन लेसांग थेम खेत्री मयुम फुलका खांगेमम चनु लैम तोंबी थांगजम मंजिता खोंजेल द लाइसम नीलचंद्र अमदी खैरकपम मीनाक्षी अईबा डॉक्टर खांगेमम समुंगो पुथोकपा नोंगथोंबम रोमा

0: आज मुथंगे फोन लोक सरी हेलो हेलो गुड इवनिंग
1: गुड इवनिंग सर
0: गुड इवनिंग मणिपुर ने तारान लोक सरी कना ओबिरो बनो
1: आई कुंफम मखा देगी नौरिम राजू ने सर
0: होय होय राजू करम ब फिल्म से तासिगे
1: खुशी की तके लगी बिकम मती के आगा देगी नंगे थोरी गिरे तक बा आई मोम लंग ने जीवी तके ले तो उन तक तके सर
0: नंग सी बी तके ले फुक देगी को
1: होय होय
0: होय होय yang possible happy or happy
1: aku mai lai kai di kuda bom bobo tu ga koi ai di su dong dong ba si dang ater gal loi sendiri ke
0: sa oh ai di nuk si bita khele gi sai khan birak panin tabini am tang hai dur ta khele ko bong ga happy to malu re
1: ha ha jere jere
0: ka hoi hoi hoi ange hang nuk sene sum phagi tok ja bunida nimida ang sak
1: pani mani tar sa re ne az phagi tok ru ji samu ja sik muting ngai
0: de sa sak singu ne biro ro nimida ang
1: ताजा
0: रेता करी मतल खोदा बिरगे
1: नसी जे कैनो सुजिंगा लुगा इगोन बम मतौरे दुगा कांगो उंगा चौया
0: ओ आई दी अरियम भाई बो हंगुरे नु बिदांगी मतम से को आई दी सक्सा दरीवा
1: होय होय
0: फनी फनी दुदी
1: ड्यूटी लोई ता दिनी
0: होय होय माने माने
1: सारो तो वीरी जी आमो गाजा रे लेपा के सेवा रे फुल चीज मतम तांग ने तो वी को सा
0: अदु मया गु समय ने नु आइनो वरी बताई साना ब मया गु ने अपाम ब इसे खन बिर गई खुस पुन ता ब द याउ जव सिन दु मई खुगी दी से दे येना पेन ब म लई लई ते ना हिजे ता रे ने रासो
1: माने माने सा दु जो कोई जु सारो गी प्रोग्राम जी याउ जे रे ग अपेन ब जेरी मिसा
0: फनी फनी दु दी रासो ने खन बिर पैसे लान तो सेरी मया पुन ता मिन रसी

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हेलो हेलो
4: हेलो,
3: गुड इवनिंग।
4: गुड इवनिंग शाह।
3: गुड इवनिंग, कनाव वीरा बनो।
4: कांसीपुर
3: दगी लाइजा
4: होय शाह।
3: होय होय लाइजा, करम फिल्म सीता सिगे
4: मेकअप दगी फिल्म गे पुष्पा गाने गा दिनेश कन सपा शीदा को नुशी बिनंग से नुशी दे को पामु बिन से तो उसे कता जगे।
3: होय होय सही बुदी आम फजा बम हाई बीरे तो वरु भी बुदी आ दे अतो पे सेम तंग खंदी बता रे। ꯂꯥꯏꯖ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯖ

0: custom sai mana. Buat kat klik eh orang amta pirem mo. Antu le. Adu mai tu tu. Dan buat kas tu ki matik phangi mi matam nu da. Adu ai khoi de aya ma tan buat kas khar tang tha ga. Aya noi na. Wai noi na. Khang mai lo. Adu to ga du mai tong le. Thakti thak le ma no ni ni.
1: Adu ga tai kari kari di yang bi.
0: Adu ki nomain tong na khoi da hang noi kari kari yeng ning ge program sil la na ai khoi na noi ni kari lai wa lai to khoi di kong kong te noi ni program sil la ge yeng ge dam ni na na adu main tong na program se moin nom sil han bi sil la ga khoi ni yeng ko se khoi ge Soviet Institute of Science and Technology ko adu moi gi museum sing adu gi moi gi ateti kena mayam malaria dum development economic development institute kas masih da aku in chaki chaki jmoi da han paum pi dun mi sing ngai ngai le ram matam scholar sing se ok da gi da gi de moi gi institute of music dance and music ta ga ad mai ta na we si ok le ram nyam nu ngai wari yo ta yam se manipur se kar mai ta ja no ke moi gi moi gi buriat ki wari is lira ni khoida changi baga ade khoi tripura no kari no manipur haisna kari no kar main tori khole ade sa gi presidency friendship society gi presidency na mata ham dhang ai ko kenum hange ai khoi hakum friendship society gi member hoina manipur chakanya na khoi chal laga changhal lagti kari gi no aina hai ade khoi ai sidagi ni khoi gi maru mapang hin hain chalam matam no jam restriction le ram manipur da changmagi foreigner changmas
1: ana hojik shu dum le lai
0: hojik shu le is my special permission lo ta matam no de permission supi pi de ana ani ra khum lak ni ma ala han ri se ad yam no ai tan han ki al sung mon le in to ni ana ha he kon explain mo di to ni anyway mo yam no ai
1: tan manipur matam da de mo se ko ki manipuri jagoi ga si di ura bra
0: masi udabran khalle adain picture khar di pun chale still photo khara manipur gi maramda jagoi adui ateti manipur gi yeng yeng ya po sing si loina en pun chale photo en mo da khal la alaga matam si da kanar ga ek friendship society se city to city adage state to republic have say ki kan only ties le niya ba manipur ga tripura ga anoma unitam arganji buriat republic sigoin moi ga khoi ga ni relation sile na dots adu mai ta assam ga georgia ga cha tha ba kamung ta ni assam cha ha ori georgia cha moi ga ta sumai ta adu state among state adu sumai ta onlai ni adu moi changan da do yam nuai gi de moi da sunuai ta khoi sunuai gi de khou dore adu gi sumai ta odna mayam city gi mayam cha la matung da khoi si india gi ni na इंडिया दे होगी धर्म बौद्ध धर्म से मसी की मरी लेना मसी की सुनुक्षी पमन लेरंगनि सन मरी लेना मुनि आसी वाखन सु अल जा अदुगा बुरियात से दिल आया मना कन बौद्ध धर्म चप कामुनि आंगे बौद्ध मंदिर मा ये यंगसियाना कन दगी मई उलानु दे कैपिटल सिटी दगी किलोमीटर फने अमलापी अकोई पुंज अ कैपिटल सगी मसीद खोई लाकने अंतर मु ओक्तन ने मी बुद्धिस्ट मोंग सिंग दो अपम हेड मोंग तो दिले रम दे मा दि क्राइम चके मा दि पुरे न्याम चप जान खोई इंडिया दे कास हम तोइन ला एज अ खोई ओ मी दे यंगली मगी मदु द लेरी बा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स अ थानेगी अदगी बुद्धिस्ट टेंपल द लेरो बुद्ध मूर्ति सिंग करी सिंग अद क्वाई दि अयाम नुंगा रखी मुन्ना खोई गी मिजे ने कोई का आखा जल लरेगा मदा सना खोंनांग पांबी म फजन हो होले दिमदी वारी तो रे छै खर मामांदा
1: अखै मिजे न खाजल लगा
0: मिजे न खाजल लगा टेंपरेचर कंट्रोल तो न सना खोंनांग पांबी से थार यो मसिना अखै की मई हंजकी बुद्ध मंदिर से मोट से मोनेस्टरी से मसि की हेड मो कनो सिन मोंग सिना मन बन खंबुला मा है बंदी तो खामुला खंबुला मा न माना इंडिया चरप मतम ना इंडिया की बुद्ध गया दगी सना खोंनांग पांबी अनि ख पुरक जान
1: अनि ख
0: पुर आ सना खोंनांग पां चारा से पुरक हंजी की सिद्ध अम थारबा अदगी मखम मम दम की अतो पम मिनो काव रे मखम मम द अम अम थाय बुद्ध मंदिर अम लेम मखम मम अनि मुस फजना हो रे मै कंट्रोल चारा सना खोंनांग

ओए मापान थोक तब नंग बन कोक तो क्या मिया उधर बोहा नंग से हान देगे हाना ना बुक सेंग तब ना सागे द खन बदो हान देने होए आई मापान थोक तब ने इसात की खन बने हाई के सुहायरो आई मधु की दमाग साव बताऊ रहे पुन्नम गसी दे मित मांग दा मैं एक सेंग ना तादना ले रे नंग बु मेराय रुपा आई के असुई बने मितमांग द तारो बने त्रो नसाना नसागी पत्तबा असुई बदो हाउसिक पावर कंग्री नंग न कंगे हायरी बदो दी चिंबाल द कोई ते बगी मतोंने मधुदा आई ताग द बने ते लाइजा आई नंग बु नुशी थेंग लबस थेंग ना नंग बु नुशी जब से आई की इपाम द मैं एक सेंग लबा मतम सिद्धि आई बु नंग ने इंथोक पीगनो ऐसे नंगे तोड़ी बम ओम से चेनी का खंग ब्रा माँ खंग ब खंग तो बा आई थोड़ी डॉक्टर आई की ओइने दे होजे नंग खंगता ने उरी से चेनी का ना खंग लबस हो आई माँ बु ज्ञान ताना बहाय गने नंग ना मरम ओइ रगा चेनी का बु वाहन बदे नतिक नतिक अतुग नंगे हाने गुम लोइना बहाय बदे आई ना सी रब भाव ओइ रोई तो बने लाइजा साउन कोल दु कक्त की अदुबो हंजिन हंजिन मंगाल ने कॉल तो सिलक बदगी फोन दो स्विच ऑफ थम जिंदु ने थम की असोम दना निंथेम ने कॉल तो रख बदा ऑफ ले रंब बदगी पाखत दना नुमिदांग दुदा लाइज की थोंगाल द लाग दुना कॉल हन न हन तो रखली अदुबो ऑफ हांग द बदुदा मयुम चंग दुना हांग ले सिरा खन बने नुपा ओय बगा नुमिदांग दा नुपी की मयुम दा चंग ब फजदे लाइज की इज्जत सोकनी हाइदुना मयुम दहन की मयुम यौरगा वखल लेता दबदगी थोई द कॉल तौरी हेलो थोई तुम ब्रो हाउ तुम द्रिये ओ कैदौर मिनो मै हाक वारिस हाबे आगत्रा फी सारम बने अदुम हायो कैदौरगे लाइज का पाव फौनो ब्रो नुमिदांगे फाउन दिए ऐसो कॉलेज हलपगा इमा का थब अम चथोलुरे मगोन कॉल सु तो हौद्रे नबादे सौनरबो कैदब यौरगे सौदी सौन दिए मांगसाय कॉलेज सुथेनौदे घंता मसा नुगाते हाइदुना हनख्रे हाय अदुदी कॉल तो सिलग हंगुदना कॉल तो तौबने स्विच ऑफ से मोय थोंगाल फाउ यौरुरे अदो आईना कुइना लेबदो नुहाई तदना आलगले मसांगम दबदुदा थम सोइरंगनीदा कैसो वारुनो केम ततोरम वाबगि दिने तब मसांगम द्रबसु हानदी फोन दम पाइबनेब अदो थोइरंगसु पाउ फंगदी हाइबथाइ बिरो ओको आइसु थममगे नंग साउनुगा थबक तोबदा नहाकियले निंथेम अहिंग चुप्पा तुम्बयादना लाइजगी खनबदा वादुना अदुमक लेरी जैक्सन सो अदुमंगाई लाइजगी वाखल द ताउदुना लैरिक पाबा चंगलम दे तौगदब मथौ पुंबा खुंदोकदुना सुमांग द थोकदुना था येंदुना लेरी आइगी थमोई काचल सिदा इंगलब मंगालगु तुमें नई तुम थोकलीबी मेरा की पूर्णिमा दो नहाक निको ओ खरे से थारे दी आ रे हेनन बस भत्ते बा नंगे नगुन से था बदे लोई बखम बनाए रे रोई लाइजा गसी उरी बताज से इंद्रा नंगे सपम दो मंगने उरी बताज से पूर्णिमा की फजा बदनी थाज की असेंगो मसकते नंदी इखंग खंग त्रिना पूर्णिमा थाजगी फजब मसक से अतोप फजबू कहीं लेरीबगे ने मपुंग ओइना फजबा अहिंब मसकदुने येमुने नंगसु थाजगी असेंब फजब सखफमदी निनी पानखलकबा थाजगी मसकतन ओइगदबने मपुंग फाद्रबा थाजदुबू करमन फजे हायगने

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 55 सेकेंड। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है हर सिंगार। 260, 70 और 80 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का वो खूबसूरत दौर जब हर गीत अपने साथ एक कहानी एक एहसास और एक याद लेकर आता था। एक तरफ लता मंगेशकर आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार और मुकेश जैसे फनकार अपनी आवाज़ से गीतों में जान डाल रहे थे तो दूसरी तरफ मदन मोहन एस डी बर्मन आर डी बर्मन ओ पी नैयर शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जैसे संगीतकार सुरों की नई दुनिया रच रहे थे और इन सुरों को अल्फाज की खूबसूरती देने वाले थे हमारे बेमिसाल गीतकार साहिर लुधियानवी शैलेंद्र हसरत जयपुरी मजरूह सुल्तानपुरी आनंद बख्शी गुलजार और राजा मेहदी अली खान जैसे कलम के जादूगर। किसी ने मोहब्बत को अल्फाज दिए किसी ने जुदाई को आवाज़ दी किसी ने ज़िंदगी के फ़लसफे को गीत बनाया तो किसी ने खामोश एहसासात को नगमे में ढाल दिया। मगर दोस्तों इन सदाबहार गीतों के पीछे सिर्फ धुन और बोल ही नहीं थे छिपे थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के दिलचस्प किस्से अचानक बनी धुनें बदले हुए बोल अनोखे संगीत प्रयोग और फनकारों की बेमिसाल मेहनत क्योंकि हर खूबसूरत गीत के पीछे एक धुन होती है एक एहसास होता है और कभी कभी एक ऐसी कहानी जो गीत से भी ज़्यादा दिलचस्प होती है। उन्हीं गीतों में से कुछ बेहद खूबसूरत नगमे हम आपके लिए चुन कर लाए हैं जो आपके दिल के बहुत ही करीब हैं। दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी में किसी ख़ास शख्स की आमद ऐसी होती है कि जैसे मौसम ही बदल जाए दिल की सूनी गलियों में बहार उतर आए और हर तरफ मोहब्बत की खुशबू महसूस होने लगे। कुछ ऐसे ही खूबसूरत एहसास समेटे हुए हैं फिल्म जीने की राह का ये बेहद खूबसूरत सदाबहार गीत। तो आइए दिलों में मोहब्बत रिश्तों में मिठास के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं उसी नगमे के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मदन मोहन साहब ने जरा भी देर नहीं की और राजा मेहदी अली खान के साथ बैठकर वहीं पर नई धुन तैयार की और उसी दिन लता जी ने भी इस गीत को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर दिया। जरा सोचिए, जिस नगमे को हम आज हिंदी फिल्म संगीत की अमर धरोहर मानते हैं, उसकी पैदाइश इतनी अचानक हुई थी, शायद यही तो संगीत का जादू है। कभी बरसों की तैयारी से गीत जन्म लेता है और कभी एक पल का एहसास ही उसे सदाबहार बना देता है। तो आइए उसी सदाबहार गीत को सुनवाते हैं, लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आपकी नजरों ने समझा। लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज में यह नगमा था 1962 में आई फिल्म अनपढ़ से, जिसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने और संगीत था मदन मोहन साहब का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 में।

हर्ट्ज पर, और आपके इस सफर में मैं हूं आपका दोस्त फिरोज, और महफिल है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार, और हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में आप बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत फिल्म के एक गीत की। दोस्तों कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें हम चाह कर भी दिल से जुदा नहीं कर पाते। कोई खास शख्स दूर चला जाए तो उसकी याद कभी खामोशी बनकर आती है और कभी किसी गीत की आवाज बनकर दिल को छू जाती है। जरा सोचिए, एक तरफ जुदाई की टीस, दूसरी तरफ यादों की मिठास, और इन दोनों एहसासात को लता जी और रफी साहब की आवाज मिल जाए तो फिर गीत सिर्फ गीत कहाँ रहता है, वो बन जाता है दिल की दास्तान। और ये अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है। अब बात कर रहे हैं एक ऐसे संगीतकार जोड़ी की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में ऐसा यादगार गीत दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया, और वो संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दरअसल 1963 में आई फिल्म पारसमणि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की पहली स्वतंत्र फिल्म थी। हालांकि इससे पहले दोनों कई बड़े संगीतकारों के साथ अलग अलग और साथ में भी काम कर चुके थे, लेकिन इस फिल्म ने उनके अपने नाम से एक नए संगीत सफर का आगाज किया, और उसी सफर में लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ें उनके साथ जुड़ी। एक ऐसा रिश्ता बना जिसने आगे चलकर हिंदी फिल्म संगीत को न जाने कितने यादगार नगमे दिए। उन्हीं नगमों में से ये यादगार नगमा आपके लिए। रात की इस रूमानी महफिल को आप भी महसूस कीजिए और सुनिए ये लाजवाब नगमा सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस गीत को लिखा है असद भोपाली साहब ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब।

वो जब याद आए बहुत याद आए। लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में नगमा था फिल्म पारसमणि से, और ये फिल्म आई थी 1963 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में। अब बात एक ऐसी फिल्म की जो अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक रही। दोस्तों, लोकगीत की मिट्टी, शास्त्रीय रंग और आधुनिक फिल्म संगीत, इन तीनों को मिलाना आसान नहीं, लेकिन आरडी बर्मन साहब ने अगले इस नगमे में ये कर दिखाया था। और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा नगमा तैयार किया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। लता जी की मिठास और मन्ना डे की मजबूत शास्त्रीय पकड़ गीत को अलग पहचान देती है। ये गीत बताता है कि पंचम के संगीत में केवल वेस्टर्न बीट्स ही नहीं थे, भारतीय लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के रंगों के लिए भी उनकी बहुत ही खूबसूरत पकड़ थी और उसमें गहरी समझ भी थी। उसी गीत को लेकर आए हम आपके अपने पसंदीदा इस प्रोग्राम में, और अगला जो गीत है वो है फिल्म बहारों के सपने से, और ये फिल्म आई थी 1967 में। आवाज है लता जी की और साथ ही साथ मन्ना डे साहब की, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत है आरडी बर्मन साहब का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत

0: भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताके हीरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
1: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहां आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहां नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
4: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
3: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we'll be taking your calls on mutual funds and matters related with them. But do remember that we will not be able to address fund-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद राजेश और नमस्कार श्रोताओं कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे अपने सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट्स ने

0: आसूरी। स्नेहा मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
1: वेलकम स्नेहा।
2: थैंक यू।
0: पहले हेडलाइंस के साथ राजेश।
1: ईरान सेज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल कंडीशंस आर मेट। Foreign portfolio investors withdraw nearly 21,000 crore rupees from Indian equities in September so far. And in bullion market, gold and silver prices rise last week.
0: ईरान ने कहा उसकी शर्तें पूरी होने तक होर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 21,000 करोड़ रुपए निकाले और सोने और चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह फिर से तेजी।
1: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first story. Iran has said that the Strait of Hormuz will remain closed until their conditions are met and commitments from the United States are implemented. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf made these comments according to Iran's semi-official Fars news agency. Ghalibaf said Iran would continue to fight and negotiate using military force against its enemies and diplomacy to consolidate what it considers gains on the battlefield. Meanwhile, the wider regional conflict continues. Saudi Arabia stated that it intercepted a ballistic missile launched towards Riyadh yesterday, while Yemen's Houthi movement has claimed attacks against Saudi targets. More from our correspondent.
3: Iranian officials have once again said that reopening the Strait of Hormuz depends on US commitments, including an end to fighting and changes to sanctions and restrictions on Iranian shipping. The strait remains heavily disrupted, even as US Central Command has claimed that it has helped more than 2,000 commercial vessels pass through the waterway in the past 2 months. The US State Department, citing the Houthi hostilities with Saudi Arabia, has renewed its travel alert for the West Asia region. The US has warned that the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Manish Shiva for Akashwani News from Dubai.
0: जी और चले कुछ श्रोताओं के पास जो इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के साथ। दिल्ली से योगेश हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: जी नमस्कार आप सभी को।
0: नमस्कार।
4: मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल की जितनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी एक फाइनेंशियल डिजिटल मोड से हो रही हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो गोल्ड के बॉन्ड्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट में रीट्स के इन्वेस्टमेंट्स हो या बॉन्ड्स या पीपीएफ वगैरह शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड वगैरह हो, तो जितने भी एसेट क्लास है सब में डिजिटल माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ऐसे में डाइवर्सिफाई करने के लिए इस लेवल पे कितना जरूरी आप समझते हैं कि जो फिजिकल एसेट्स होते थे पहले जिनको हम ओन करते थे, जैसे वो प्लॉट या घर हो सकता है या फिजिकल गोल्ड हो सकता है, तो फिजिकल एसेट्स का होना भी कितना जरूरी है एक बैलेंस बनाकर रखने के लिए?
2: योगेश जी, जो आपका ओवरऑल सवाल है वर्चुअल एसेट्स वर्सेस फिजिकल एसेट्स का, तो हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान रहते हैं, बट जहां तक डिजिटल ओनरशिप की बात है ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वाइल यू गेन द एक्सपोजर टू दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास वाया दैट मेथड, बट फिजिकल एसेट से आप ओनरशिप से जो एक हमारे दिमाग में एक चीज आती है वो रहती है एक साइकोलॉजिकल, हमें लगता है कि ये चीज हमारे पास है। डिजिटल या वर्चुअल कोई भी चीज होती है तो हमें लगता है कि इसकी पकड़ हमारे हाथ में नहीं है, बट जब भी कोई एसेट क्लास का एक्सपोजर हमें लेना होता है ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनको साइड में रख के हमें ये देखना होता है कि किसी भी चीज को जब आप चाहे फिजिकल ओन कर रहे हो चाहे वर्चुअल ओन कर रहे हो, बट उसका बेनिफिट क्या है आपके लिए, मतलब वो आपके किसी गोल से लिंक्ड है या फिर वो किस टाइप का एक रिस्क या फिर लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसे कैसे हैं उस फिजिकल एसेट्स में जो आपको सोचना चाहिए, चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम की बात है तो अगर हम फंड्स के पर्टेनिंग बात करें तो जैसे हमारे कुछ बेसिक थंब रूल्स रहते हैं विच हेल्प अस डाइवर्सिफाई

0: पोर्टफोलियो कि हम एएमसी लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, हम कैटेगरी लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, हम एसेट क्लास लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, ये कुछ चीजें करके हम लंबे समय के लिए अपना पोर्टफोलियो संतुष्टि से बना सकते हैं।
1: जी, आपने जैसा कहा अभी स्नेहा, या जैसा सवाल था इनका कि डिजिटल सब कुछ लगभग डिजिटल हो गया है, तो ये सहूलियत है, और लेकिन ये सवाल इनके मन में क्यों आया, मैं उस पर विचार कर रहा था कि क्या इसके पीछे डर क्या है, क्या सब कुछ डिजिटल है तो कहीं सब कुछ कॉलैप्स हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब कुछ ज़मीन पर है। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहे हैं, और वहाँ से फिर वो शेयर बाजार में अगर जा रहे हैं या बॉन्ड मार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ से भी वो फिर वो कंपनी एक्चुअली वो बाजार में है वो पैसे।
0: पर यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि चाहे वो बाजार में है, आपने लगाए हुए हैं, ये सब एसेट क्लासेस एक रेगुलेटरी बॉडी के अंडर है, जिनका मेन बेनिफिट ही यही है कि इन्वेस्टर की सुरक्षा और इन्वेस्टर का जो एक एक्सपीरियंस है उसको कन्वीनियंट और इजी बनाने के लिए मतलब यहाँ पे कुछ डाउट नहीं रखना चाहिए।
1: कोई ऐसी कोई हवा हवाई चीज नहीं है डिजिटल की अचानक कॉलैप्स हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ
0: सारे रिकॉर्ड्स डिजिटली रहते हैं
1: जी।
0: मतलब पुराने टाइम पे वो जो शेयर सर्टिफिकेट वाली बात होती थी, काफी लोगों को पता नहीं होता था कि अंदर पड़ा हुआ है कुछ, या वो पेपर
1: भूल जाते थे। अभी भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं हमारे पास ऐसे।
2: So, the domestic investors are actually focusing quite a bit on macroeconomic data, the geopolitical developments. You also have the foreign institutional investors flows, the commodity prices and global bond yields. In such a scenario, what should an investor be doing when it comes to mutual funds? How should they navigate the particularly the geopolitical situation that's prevailing today?
0: Right. So, you know, there is a specific problem here, which is that in the last 3-4 years, information has been all over. The information flow and thereby the interpretation of every minor macro detail has really reached investors in a way that, so let's say for people who entered post-COVID, we've always been talking about how their experience for 2-3 years had been spectacular, given the kind of returns or the right. run-up that they were seeing in their portfolios. But suddenly when things started to change, I would not say collapse, change being that is the market design, the ups and downs, then the information started taking importance beyond a particular investor's circumstances or situations. So I would say for investors in a world where everything sort of seems haywire or for the time being, all of that, it is good to know all of it to remain aware of what is happening in the macro world and, you know, outside the domestic as well. But when it comes to your own portfolio, you should be grounded in the fact that how your personal policies are, how your circumstances are, how your situation is. If, let's say, you need some money for a very important thing which you had been investing for, you should really not think about what is happening in the geopolitical arena or anywhere in the world, because you invested your money for this day, so you should pull it out. If in case you do not need your money, just continue with your asset allocation, with your SIPs. Don't be scared because of, you know, what is happening out there, because this is the most tough part, you know, staying in the game when things look red in your portfolio.
2: So are there any sector specific mutual funds that you would recommend that people should focus on?
0: I would say specific to sectors, more than that, to understand and, or let's say, to sort of keep control over where you are investing. You should actually be investing into diversified funds. Thereby, you will be giving the fund manager the opportunity to, with the macro developments, to, let's say, change the sectoral exposures or the company dynamics within the portfolio for your benefit. And that should be the focus, and so, not really the...
2: So the mantra, according to you, should be that one should continue to invest.
1: Bilkul. Sneha ki raay yahi hai, Rajesh, ki aap girte hue bazaar ka fayda uthaye aur bazaar mein paisa lagate rahe taki aap कम प्राइस पे यूनिट्स खरीद सकें, म्यूचुअल फंड में बने रहें। अगले कॉलर हैं जयपुर से शिवा।

0: स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्ते
1: सर, मैं अभी आने वाले 7-8 साल के लिए लगातार मंथली SIP करना चाहता हूँ फ्लेक्सी कैप फंड में। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये पारस्परिक का फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो कौन सा बेटर रहेगा सर, प्लीज ये बताइए।
2: शिवम जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने टाइम होराइजन को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं एंड इसीलिए आपने जो एक एसेट क्लास सिलेक्ट करी है वो भी बिल्कुल सही है, विच इज इक्विटी। जब भी कुछ चुनाव की बात आती है ना कैटेगरी लाइक फ्लेक्सी कैप, तो जैसे अभी हम पहले श्रोता को बता रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन एक की रहती है अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो हमें हमेशा जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कम से कम 2 फंड्स का चुनाव करें फ्लेक्सी कैप, मतलब किसी भी कैटेगरी में वैसे, बट आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कहा तो 2 फंड्स का चुनाव करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है ताकि किसी भी एक फंड पे हमारी जो पोर्टफोलियो की डिपेंडेंस है उससे प्रॉब्लम ना रहे, और जब इन्वेस्ट करें तो SIP के माध्यम से ही करें।
0: जी आइए और अगली खबर पे नज़र डालते हैं। इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने भारतीय शेयर बाजार से 20,974 करोड़ रुपये निकाले हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है। वैसे देखा जाए तो देश के शेयर बाजारों में कुल बिक्री के जरिए FPIs ने 23,676 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन प्राथमिक बाजार में उन्होंने 2,700 करोड़ रुपये का निवेश भी किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 25 आधारभूत अंकों की वृद्धि से वैश्विक तरलता की स्थिति पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। भारतीय ऋण बाजार में भी FPIs की बिकवाली का दबाव बना रहा। सितंबर में अब तक FPI ने FAR के जरिए ऋण प्रतिभूतियों से 10,296 करोड़ रुपए निकाले हैं। VRR के जरिए 1,817 करोड़ रुपए की निकासी हुई, जबकि जनरल लिमिट मार्ग से समीक्षा अवधि के दौरान 1,068 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई।
3: If you have any questions related to mutual funds, we have in our studio mutual funds experts Neha Suri with us, so you can call us at 2331-4444 or 2331-0481 or 2371-7106. In the meantime, we are joined in by Shankar from Bhopal. Shankar, a warm welcome. Please ask your question.
4: Good evening, Market Mukherjee.
3: Good evening.
4: Ma'am, my question is about REITs fund. If someone is invested in REITs fund, what should be the allocation into REITs fund as far as equity and debt is concerned and gold? What should be the REITs fund investment? And secondly, REITs fund earns on what? Do they earn on rental income or do they earn on price appreciation of property? How this model of REITs work? Can you please explain to us? Thank you.
2: So, Shankar, when it comes to the kind of allocation you should have beyond the traditional equity and debt allocation. By traditional, I mean equity asset class and debt asset class overall versus, let's say, gold or REITs. In your portfolio, while majorly equity and debt should be along with as per your asset allocation, for a REITs kind of exposure or, say, gold, you can look to have, let's say, a 10 to 15% kind of an allocation. Having said that, now even, you know, equity mutual funds have the leeway to invest some portion in REITs or the listed real estate and gold / silver or any kind of commodities. So there is no longer a need to have a specific allocation carved out for, say, gold or REITs. Having said that, if you're still looking for some, of course, you can look to have a lower allocation, as I said, around 10%. When you say how they earn, while the details of that I will definitely have to look at, but since they are listed, the price appreciation is well part of it. So that part remains same as shares.
0: जी और अभी के जो हालात हैं स्नेहा, जिसे हम पहले बात कर रहे थे कि गिरते हुए बाज़ार का फ़ायदा उठाएं, और लेकिन आम तौर पर ये गिरता हुआ बाज़ार जब काफ़ी समय तक कायम रहता है और देर तक, तो थोड़ी घबराहट तो होती है। चलिए हम इस पर आगे चर्चा रखेंगे जारी अपनी। और नोएडा से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
5: सर, मेरे पास SBI का कॉन्ट्रा फंड है, वो बहुत अच्छा प्रूव नहीं कर रहा है,

0: मार्केट मंत्र में ही मैंने सुना था कि एसबीआई कॉन्ट्रा में आप निवेश कीजिए एससीप, लेकिन कोई अच्छा परसेंटेज उसमें जनरेट नहीं हो रहा है, तो कृपया सलाह दें।
1: विनोद जी, हम जिस कभी भी जिस भी कोई भी इक्विटी फंड्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते टाइम कि हमारा कोई भी फंड होता है वो हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरते हुए उसके बेस्ट फेजेस आएंगे और उसके वर्स्ट फेजेस आएंगे, और कुछ ऐसे फेजेस होंगे जब आपको ना ही कोई बेनिफिट हो रहा होगा, बहुत ही मिडलिंग टाइप ऑफ फेजेस होते हैं। यही वो एक्चुअल फेजेस होते हैं जब हमें उसमें लगे रहना होता है, बिकॉज अगर वो फंड आपके पोर्टफोलियो को ओवरऑल कंप्लीट करता है तो हमें उसके जो एक मिडलिंग फेज होता है उसमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग एज अ स्ट्रैटेजी रहती है, ये इसमें चुनाव ऐसे शेयर्स या स्टॉक्स का करते हैं फंड मैनेजर्स जिनकी संभावना ऐसी रहती है कि ये अभी मार्केट से अलग चल रहे हैं, बट जब मार्केट का एक दूसरा टाइप ऑफ लेट्स से डायरेक्शन आएगा तब ये आपको बेनिफिट देंगे। तो कॉन्ट्रा और जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टाइल्स होते हैं, इनमें थोड़ा जो एक धैर्य या पेशेंस होता है वो हमें ज़्यादा लेकर चलना होता है। ओवरऑल फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में सूटेबल है, आप SIP के माध्यम से उसमें लंबे समय से करते आ रहे हैं तो भी आपको समय देना चाहिए, और अगर आपने हाल फिलहाल में स्टार्ट करा है तो इक्विटी को रंग दिखाने के लिए कम से कम 3 या 5 साल हमें चाहिए ही रहते हैं, तो मेरी समझ में आपको बने रहना चाहिए।
2: From Odisha, we are joined in by Ambuja. A warm welcome, Ambuja.
3: Good evening, Market Mantra.
2: Good evening.
3: My question is, when I will take a loan against mutual fund, what discipline should I follow?
1: So, loan against mutual fund is a very, a very new and a very good way of, let's say, continuing the compounding part of your mutual funds and still getting some liquidity in your favor. I would say you should just not, whenever taking any kind of loan, according to me, one particular aspect remains that any kind of, interest payment, you should remain on top of it, and you should not, let's say, consider this particular aspect of taking a loan for every liquidity needs that crops up. So you should have discipline in the sense that you are taking loan against your mutual fund units for this particular reason because you are not able to arrange for any other, let's say, way out. While this remains a good way to take, to get some liquidity immediately, but a dependence of a kind that this becomes your way to go every time should be, I guess, taken care of.
4: Yeah. अगले कॉलर है मुंबई से पंकज, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
5: हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंडल टीम।
4: गुड इवनिंग।
5: आई हैव गॉट टू क्वेश्चंस। वन इज, इफ आई हैव अ 5+ year होराइजन, हाउ मेनी फंड शुड आई एक्चुअली हैव इन माय पोर्टफोलियो एंड हाउ डू आई अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन इन माय पोर्टफोलियो, वन इज दैट। एंड द सेकंड वन इज अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाउ इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट, सो हाउ गुड और बैड आर दीज, एंड स्पेशली नाउ एट सच अ टाइम व्हेन से द US मार्केट्स और अदर मार्केट्स आर डूइंग आउट परफॉर्मिंग द इंडियन मार्केट, सो इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन सच फंड्स? थैंक्स।
1: राइट, सो पंकज, टेकिंग योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, one important aspect of diversification beyond AMC and fund level diversification or asset class diversification is having some diversification or some of your money beyond the domestic or the local horizon, which becomes the domestic country. So having some allocation to international funds is a really good way of topping up diversification in your portfolio. Having said that, international specific mutual funds which are 100% investing in those sort of are going through a blockage of a kind that you are not able to invest in those funds. But there are funds out there, if you let's say search, a Google search would tell you that there are funds which are investing some portion of their investments, their money, into international specific stocks, which can be a good way to start if they are overall diversified. Now coming to your first question, that since you're beginning, you have a long-term horizon, how many funds you should have? So there is no scientific formula or rule of thumb as such that these many funds will get you this much kind of a benefit of any kind. How you should go about selecting is something that I can help you with. One, looking at your time horizon and risk appetite, have some sense of asset allocation, how much equity you want, how much debt you want, Secondly, in case of equity, you can look to have, let's say, one, two flexi-cap, multi-cap as core of your portfolio because they are diversified. They get you large, mid, small all at once. And then when you have some experience already, then you can look to have some 20% into small and mid-cap, which require longer horizon because of the risk that they get you. But of course, the return benefit for the generation of wealth of your overall portfolio can enhance with that kind of exposure.
4: Ji.
2: Dinesh from Delhi joins us now. Dinesh, a warm welcome.
6: Namaskar. I am Dinesh Kumar from Delhi, Ashok Vihar. I want to ask that from long-term perspective benefits, which funds are likely to perform better? Gold funds, silver funds, or aggressive hybrid funds? Thank you.
1: Right. So, Dineshji, the kind of comparison that we are making here is somewhat not aligned because aggressive hybrid funds are a mix of equity and debt, while gold and silver become part of the commodities. And we've seen historically how, you know, there have been times when commodities or gold, let's say here, performs really well when there is uncertainty in the equity market, which hurts, of course, aggressive hybrid funds since they are about 65-70% in equity. So I would say you can look to have, if you're looking for a long-term horizon, you can look to have exposures of all of these asset classes into your portfolio because a combination is what will help you in the long term. And, you know, specific allocations, standalone allocations may not be able to generate that much benefit.
4: Ji, MP se DS Sharma hamare saath hain. Swagat hai, aapka sawal poochhein.
7: Hello.
4: Hello, ji.
7: Namaskar, sir.
4: Namaskar.
7: Main DS Sharma bol raha hu, Mansoor MP se.
4: Ji.
7: Main 2017 mein maine SDFC से कुछ फंड्स लिए थे सर
4: जी
7: बैलेंस में करीब 15 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए एक टैक्स सेविंग में और कुछ दूसरे भी लिए थे दो तीन साल तक तो उनके मेरे पास में रिजल्ट आते रहे मगर अब क्या है दो तीन साल से उनका पता ही नहीं है कि वो कहां है बैंक जाता हूं तो कहते हैं ये है ही नहीं हमारे अकाउंट में जबकि मेरे पास में उनका हार्ड कॉपी है सब कुछ है तो क्या करना चाहिए सर
1: जी डियर शर्मा जी अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो बैंक को अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें सर्च करके वो मिलना चाहिए या फिर अगर आपने डायरेक्टली बैंक के साथ करा था तो बिल्कुल ही मिलना चाहिए और अगर कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बीच में था जिसके साथ आपने करा था आप उनसे मदद ले सकते हैं और दूसरा तरीका ये रहता है कि आप मतलब हम एज इन्वेस्टर्स हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम डायरेक्टली जो AMC है जिनसे हमने इन्वेस्ट करा है उनको भी रीच आउट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के जरिए या फिर सेबी भी अलाउ करते हैं हमें कंप्लेन रेज करने का तो ये तरीके आप
2: कोई अम्बेसमैन नहीं है जिनके पास जा सकते
1: बिल्कुल सेबी तभी मैं बोल रही हूँ कि वहां पे भी होगा
4: आई अगली खबर पे नजर डालें हम सोने और चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह फिर तेजी देखने को मिली ये बढ़त मुख्य रूप से सप्ताह के अंत में आई रिकवरी के कारण रही जिसे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से समर्थन मिला MCX में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 1% की बढ़ोतरी हुई और ये 1,54,381 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ दिसंबर अनुबंध वाली चांदी के वायदा भाव में 2.8% की बढ़त दर्ज की गई और ये 2,41,603 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 0.4% की बढ़ोतरी हुई और ये $4,390.70 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुआ
2: फ्रॉम जयपुर वी आर जॉइंड इन बाय जितेंद्र वार्म वेलकम जितेंद्र
8: हेलो हाँ मैडम ये एक्टिव फंड क्या होता है एक नया NFO आया है शायद मोतीलाल ओसवाल का ना किसका है एक्टिव फंड तो क्या मतलब वो किस टाइप का मतलब एक्टिव से क्या समझ में आ रहा है
1: जितेंद्र जी पूरी जानकारी के लिए मुझे पूरा नाम चाहिए होगा फंड का कि मतलब मोतीलाल के कौन से फंड या क्या नाम
2: We'll get back to him next week sometime. Moving on, the new merchant discount rate MDR framework will come into effect from 15th of next month. Under this framework, Unified Payments Interface UPI transactions of up to 2,000 rupees will attract zero MDR. As a result, there is no impact on small value UPI transactions up to 2,000 rupees. National Payments Corporation of India said these small

0: value UPI transactions comprise more than 95% of the total volume of UPI person-to-merchant transactions. It added that the intent of levying reasonable MDR is to ensure that UPI remains accessible and convenient for everyday transactions while supporting long-term ecosystem sustainability.
1: Ji, agli caller hai Punjab se Meenakshi. Swagat hai aapka, sawal poochhein.
2: मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ भटिंडा से. मेरा सवाल लगभग इसी से मिलता जुलता था कि अगर मैं यूपीआई के थ्रू एसआईपी में इन्वेस्ट करती हूँ और अमाउंट अगर 2000 रुपए है तो क्या एमडीआर लागू होने के बाद उस पर कोई असर आएगा?
3: मीनाक्षी जी, अभी तक जो मैं आपको बता सकती हूँ वो यही है कि एज एन एसआईपी इन्वेस्टर हम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बाकी आगे आने वाला समय ही बताएगा.
0: Domestic investors are expected to focus on macroeconomic data, geopolitical developments, foreign institutional investor flows, commodity prices and global bond yields for Qs in the week ahead. On the economic front, market participants will closely track core industries data. The primary market is also set for another busy week with 6 main board initial public offerings, IPOs, opening for subscription. Globally, investors will monitor developments surrounding the West Asia conflicts. Focus will also be on anticipated visit by Chinese President Xi Jinping to the United States.
1: Aur jaldi jaldi Sneha, hum दो चार सेंटेंस में अगर हम बताना चाहें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बस गिरते हुए बाजार का फायदा उठाएं, बाजार में बने रहें, आप आगे क्या जोड़ना चाहेंगे इस पे?
0: और कंपाउंडिंग कैसे होती है? हाउ शुड वी आस्क, यू नो, आस्क द लिसनर्स टू बी वेरी वेरी यू नो वेरी वेरी इन्वॉल्वड इन द म्यूचुअल फंड्स.
3: सो अगर आप 1 से 2 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको जो एक बढ़ोतरी दिखती है उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं.
1: इसीलिए वक्त इतना ही है आज स्नेहा कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: हेडलाइंस वंस अगेन. ईरान सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल कंडीशंस आर मेट. FPI withdraw nearly 21,000 crore rupees and in bullion market, gold and silver prices rise last week. That's what we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

शुनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 10 सेकंड। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज, लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत। और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के उन नगमों को लेकर हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलोस आदाब। और दोस्तों चलिए यादों की उस खूबसूरत दुनिया में जहां कहानी, संगीत और प्रकृति तीनों मिलकर सिनेमा को एक यादगार अनुभव बना देते थे, और उस दौर का नाम है सुनहरा दौर, यानी गोल्डन एरा, जिसमें बेहद खूबसूरत फिल्में बनी, बेहद खूबसूरत गीत लिखे गए और गाए गए। और पहला नगमा एक बेहद खूबसूरत फिल्म से, हम बात कर रहे हैं साल 1960 की बहुत ही चर्चित फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की। फिल्म का निर्देशन किया था राधु कर्माकर ने और निर्माण किया था राज कपूर साहब ने। फिल्म में राज कपूर, पद्मिनी और प्राण प्रमुख भूमिका में नजर आए। राधु कर्माकर की ये पहली फिल्म थी जिसका निर्देशन उन्होंने किया था। इससे पहले वे राज कपूर की कई फिल्मों में सिनेमेटोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। फिल्म के गीतों को संगीत दिया था मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने, और गीत लिखे थे इस फिल्म के शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने। इसी फिल्म से हमें मिले कई सदाबहार नगमे, ओ बसंती पवन पागल, आप लौट चले और होठों पे सच्चाई रहती है, और भी बहुत सारे बेहद खूबसूरत गीत। फिल्म की खूबसूरती में मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों का भी खास योगदान रहा। प्रकृति की इस दिलकश पृष्ठभूमि ने फिल्म के दृश्यों को यादगार बना दिया। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसमें कई फनकारों ने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज दी, उनमें लता जी, गीता दत्त जी, मुकेश, मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर। तो आइए इसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। इसको लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन साहब का।

जी गीता दत्त मुकेश मन्ना डे साहब महेंद्र कपूर और शैलेंद्र की बेहद खूबसूरत ये महेंद्र कपूर साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

एक बेहद खूबसूरत फिल्म और इस फिल्म का ये नगमा बहुत ही प्यारा जिसे अपनी आवाज़ दी लता मंगेशकर जी और महेंद्र कपूर साहब ने। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा गीत मेरे मनमीत की महफिल।

महेंद्र कपूर साहब और लता जी की नीनी आवाजों के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत। गीत मेरे मनमीत से फिर हो गई हमारी मुलाकात, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंजू की

0: गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ के कार्यालय ने साफ किया है कि भारत के चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु द्वारा दी गई जानकारी, तथ्यों और दस्तावेजों की ठीक से जांच कर ली गई है। एक प्रेस नोट में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने कहा कि डॉ. सिंधु की वोटर लिस्ट एंट्री को मंजूरी दे दी गई है और इसे विधानसभा क्षेत्र 38 दिल्ली कैंट की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बरकरार रखा गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान पर 19-0 से शानदार जीत दर्ज की। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। इसके साथ ही भारतीय महिला बैडमिंटन और टेबल टेनिस टीम ने भी अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया है।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Nipunika Shahid. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
2: Climate change manav astitva ke anek staron par asantulan paida karta hai. Biodiversity loss, water stress aur land degradation isse gehrai se jude hain. Water stress wale kshetron mein farm ponds sthaniya samuday ke liye atyant upayogi siddh ho sakte hain. Ye na keval varsha jal ko क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Garjan 2026 in Jodhpur. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties. Ukraine launched over 1,000 drones at Russia overnight, including hundreds targeting Moscow. Mayor of Moscow, Sergei Sobyanin, called it the largest ever drone attack on the capital, reporting damage to an oil refinery and a residential building. Mr. Sobyanin said two people

0: people were killed and 20 injured in the attack across wider Moscow region. Russia's defense ministry said its forces shot down 1,100 Ukrainian drones across the country. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Kyiv used a range of missiles and drones in the attack, including Ukraine's domestically made Flamingo and Pelican missiles, to hit oil and logistics facilities. Central Board of Secondary Education CBSE organized an interactive talkathon on the theme Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat yesterday on the call of Prime Minister Narendra Modi for a drug-free India. The CBSE said the 45-minute program brought together experts, educators and students to discuss issues related to substance abuse, prevention and the importance of making healthy and responsible choices. The initiative aimed to directly engage students through social media platforms. CBSE invited questions from students and they raised questions concerning mental health, peer pressure and steps for de-addiction. India made a strong start at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, winning two silver medals in shooting on the opening day yesterday. Trio of Ilavanil Valarivan, Vidarsa Vinod and Sonam Maskar won silver in the women's 10M air rifle team event, while Ilavanil added another silver in the individual event. The President and Prime Minister have congratulated the athletes on the feat. Suchika Tarial created history, becoming the country's first athlete to assure an Asian Games medal in mixed martial arts after reaching the women's traditional 60kg semi-finals. In cricket, Indian women's team stormed into the final after 114-run win over Bangladesh. They will take on Sri Lanka in the gold medal match tomorrow. Indian women's badminton team advanced to quarterfinal with a 3-0 win over Kazakhstan. The men's and women's hockey teams also began campaign with big wins. Men's team defeated Indonesia 13-1 in their Pool A match, while women's team beat Uzbekistan 19-0 in their Pool B opener. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है, और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया एक बेहद रोचक वेबसाइट का, साथ ही जो वेबसाइट के संस्थापक हैं उनसे बात भी की। आपको याद आया, वेबसाइट थी www.bharatrajya.com और इसके संस्थापक श्री कृष्णा शेषाद्री जी, इनसे प्रधानमंत्री जी ने बात भी की थी। तो आज हम भी कृष्णा शेषाद्री जी से अपनी एक बातचीत के माध्यम से आपको इस वेबसाइट के बारे में बेहद रोचक जानकारी दे रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कृष्णा शेषाद्री जी से बात की थी।
3: साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
4: नमस्ते सर। नमस्ते
3: भाई। मुझे पता चला है

0: न आप टेक की दुनिया से हो, न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: सर धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
1: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे, उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया। और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक ओडिशा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है, इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
2: हम जानते हैं कि ये बातचीत आपको बेहद रोचक लग रही है, लेकिन आपको हम ज्यादा तो ऑडियो क्लिप नहीं सुनवा पाएंगे। हाँ, कृष्णा शेषाद्री जी से हम बहुत सारे सवाल जरूर करेंगे ताकि इस वेबसाइट के बारे में, उनके इस प्रयास के बारे में हम और ज्यादा जान सके। तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं कृष्णा शेषाद्री जी का। कृष्णा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद धन्यवाद।
2: आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने आपकी वेबसाइट का उल्लेख मन की बात में किया और आपसे संवाद भी हुआ उनका, कैसा लगा आपको, आपका अनुभव कैसा रहा?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे आपके स्टूडियो पे बुलाया। और जैसे बात आती है मन की बात की, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने बनाया था एकदम मैंने एक हॉबी की तरह से बनाया था, मेरे को इससे कोई अपेक्षा नहीं थी, मुझे पसंद था तो मैंने बनाया। तो जब मुझे पता चला कि इस वेबसाइट को प्रधानमंत्री जी ने ना ही देखा है बट उसे यूज भी किया है, उसके एक्सपीरियंस किया है, उसके बहुत सारे फीचरों के साथ खेला है, तो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर माई फैमिली एज वेल। द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी वॉज वेन माई मदर क्राइड आफ्टर सीइंग द ब्रॉडकास्ट, इट वॉज टीयर्स ऑफ जॉय दैट शी हैड। मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ गई थी कि हमारे सबका एक लक्ष्य होता है, पूरी दुनिया चाहे ना चाहे हमें अपने माँ पिताजी, वी हैव टू मेक देम प्राउड, और वो मैंने इसके थ्रू किया, दैट वॉज माई बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन। और मेरी जो वाइफ है शी इज अ नेशनल लेवल राइफल शूटर, सो शी नोज हाउ हार्ड इट इज टू अचीव समथिंग एट दैट लेवल, एंड सो शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। और रही बात बाकी दोस्तों या प्रतिक्रियाओं की, मेरे बहुत सारे जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें कोई मैसेज नहीं भेजता था वो जाग उठे थे मन की बात के बाद, बहुत सारे लोगों ने उसमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पॉजिटिव ओपिनियन या प्रतिक्रिया दी, वेबसाइट के बारे में तारीफ की, विच आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन माई पेरेंट्स, जो हमारे मम्मी डैडी अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे मम्मी डैडी को अच्छा वो आपका बेटा है, वो आपका बेटा है, जो वो एक फीलिंग मेरे मम्मी डैडी के, आज भी मेरे मम्मी डैडी के आंखों में वो जो प्राइड है, मैं आपको सच बताऊं तो अभी भी आज भी मैं थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है कि, मेरे हिसाब से आई थिंक 2 हफ्ता हो गया है लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक्चुअली ये मेरे वेबसाइट का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया।
2: अच्छा ये बताएं कि वेबसाइट शुरू करने का विचार आपको कैसे आया, कब सोचा आपने कि इस तरह की एक वेबसाइट मुझे शुरू करनी है?
3: एक्चुअली आपने मन की बात में भी सुना होगा तो मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, तो मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर मैं एक MBA हूँ, मैं अभी मार्केटिंग में काम करता हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ है और इतिहास में उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बचपन से मुझे इतिहास में एक विशेष तरह की दिलचस्पी है, आई हैड अ वेरी गुड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, तो एक्चुअली उसका इंस्पिरेशन जाता है मेरी माँ को, वी आर ऑल तमिलियंस, मेरी माँ एक तमिल में एक मैगजीन आती थी उस टाइम पे, वीकली मैगजीन होती थी, उसका नाम कल्की था, तो उन्होंने एक जो साउथ इंडियन चोलास के ऊपर एक एपिक लिखी थी, उसका नाम था पोन्नियिन सेल्वन, 1-2 साल पहले उसकी पिक्चर भी बनी थी, तो उस मैगजीन में हर हफ्ते वीकली स्निपेट्स के हिसाब से छपती थी, और मेरी माँ हर हफ्ते वो मैगजीन लेके आती थी और मुझे पढ़ के सुनाती थी, और उन्होंने इतने अच्छे से उस टाइम का, उन चोलास का, उन मंदिरों का और उस लैंडस्केप का इतने अच्छे तरह से वर्णन किया था कि मेरे तभी से मेरी हिस्ट्री में इंटरेस्ट शुरू हो गया था कि ये हम और किस तरह से देखें और किस तरह से जानें, और इस तरह से मैंने इतिहास के और सारे कई सारे किताबें पढ़ना शुरू की और वहीं से मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था। और रही बात भारत राज्य के इंस्पिरेशन की, तो मेरे जब भी मैं हिस्ट्री क्लास में स्कूल में पढ़ता था या कोई मुझे हिस्ट्री सिखाता था, हमारे देश में जिस तरह से हिस्ट्री सिखाई जाती है उससे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ इट, क्योंकि हम क्या करते हैं एक इतिहास जैसे एक सब्जेक्ट को या एक डेट या कोई किंगडम या कोई किंग उस लेवल पे लेके आ जाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि इतिहास जो है एकदम ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जहांगीर ने क्या किया उससे मेरा क्या लेना देना, तो मतलब हिस्ट्री एकदम बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है, और हम कभी भी हिस्ट्री को पूरे भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखते। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं कि हमको ये नहीं पता कि जब मुगल नॉर्थ में थे, जब बाबर आए थे देश में 1526 में, तब साउथ में क्या हो रहा था, जब वास्को डगामा आए थे 1400s के एंड में, तब नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था, तो हमें एक पूरा इंडिया का व्यू हिस्ट्री में कभी नहीं मिलता। तो ये जो था ये आइडिया मेरे मन में 15 साल से इट वॉज ट्रबलिंग मी, मेरे को चुभ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब वो आइडिया आया तो मेरे पास वो ना टेक्निकल एक्सपर्टीज थी ना नॉलेज थी उस आइडिया को एक वर्किंग वेबसाइट बनाने में। लेकिन जब ये AI रेवोल्यूशन आया 3 साल, जब AI ने हमें कोडिंग और प्रोग्राम बनाने की शक्ति दी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे इस्तेमाल करके मेरे 15 साल के ख्वाब को सच बनाया जाए।
2: तो कृष्णा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐतिहासिक लेखों, दुर्लभ तस्वीरों और नक्शों को जब हम आर्काइव करते हैं, फिर उन्हें जब सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटाबेस को कैसे आपने डिजाइन किया?
3: अगर आप भारत राज्य के वेबसाइट देखेंगे तो इसका स्ट्रेंथ ही इसकी सिंप्लिसिटी है। हम ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस या ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम यूज करते हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो वेबसाइट का जो हीरो है वो मैप है। आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरनेट में ऐसे ओपन सोर्स मैप मिलते हैं जहां पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपको बराबर मैपिंग मिल जाती है। तो हमने क्या किया?

0: कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मैप है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैप को लिया और हमने एक सब कॉन्टिनेंट व्यू लिया था, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इस पांच कंट्री के मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल मैप्स मिले। और फिर हम मैंने क्या किया कि AI के थ्रू मैंने ऐसे सोर्सेस या ऐसे बुक्स चूज किए जो इतिहास में एक स्टैंडर्ड माना जाता है, जैसे जादूनाथ सरकार जी हैं और ऐसे बहुत सारे किताबें हैं जो हमने मैसूर किंगडम के एक हायर वर्धन राव करके एक है, शायद मैं नाम में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर सकता हूँ, मुझसे माफी चाहता हूँ। तो ऐसे मैंने कम से कम एटलीस्ट 25-30 बुक्स को सोर्सेस के नाम पे डिसाइड किया और फिर मैंने क्या किया कि AI को ये सारे बुक्स में सर्च करने बोला कि एक ईयर में उस डिस्ट्रिक्ट में कौन राज कर रहा था। और इस तरह से मैंने एक पूरी मैपिंग बनाई। अभी जो आप लेते जाओगे तो 300 CE से आपके पास डेटा है, तो 300 CE टू 2026 में हर एक साल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसने राज किया का मैंने मैपिंग बनाया और वो मैपिंग से आपको भारत राज्य आज दिखता है।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: हाँ, ये जो गीत है ये मेरी वाइफ और मेरे पिताजी और मेरी मम्मी, ये तीनों का वन ऑफ मोर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। डेफिनेटली ये गाना सुनिए, ये गाना है अमर प्रेम से कुछ तो लोग कहेंगे।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें होती हैं या दस्तावेज होते हैं, जब हम वो चेक करते हैं तो वेबसाइट की जो स्पीड है बहुत धीमी हो जाती है उनकी वजह से। तो आपने ऑप्टिमाइजेशन की तकनीक इस्तेमाल की है ताकि ठीक से ये वेबसाइट चल सके?
1: तो हमारे वेबसाइट में मैंने ऐसे कोई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें या ये कोई नहीं डाला है, क्योंकि मेरा ये मैप बेस्ड वेबसाइट है, तो इसमें हम तस्वीरें नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम तस्वीरें डालते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि भारत राज्य का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में किस किस भाग में कौन राज कर रहा था, तो मेरे को उस ऑब्जेक्टिव से डाइवर्ट नहीं होना था। तो इसके लिए पिक्चर्स हो या ऐसे हाई रेजोल्यूशन फोटो हो जिससे यूजर का ध्यान या यूजर का क्या बोलते हैं उसको एक्सपीरियंस हर्ट हो सकता है या डिमिनिश हो सकता है, वो कोई भी फीचर मैंने नहीं डाले हैं। और रही बात उससे डेटा निकालने में, हाँ बहुत सारे किताबें ऐसी थी जो एक फोटो के हिसाब से थी, तो हमने जब एरिया के लिए वो डेटा सेट लोड करने से पहले मैंने उसको OCR कराया, उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उस कन्वर्जन से मैंने डेटा निकाला। लेकिन अगर आप देखने जाओगे वेबसाइट में कोई ऐसा कोई फोटो नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम वो फोटो डालते हैं तो यूजर का ध्यान बट जाता है और हमारे वेबसाइट का कोर ऑब्जेक्टिव है वो शायद कहीं मीट नहीं हो पाता।
0: आपकी वेबसाइट में लोग सामग्री जोड़ सकते हैं और इस तरह से आपके प्रयास में वो भी जुड़ते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि आपने सिक्योरिटी के लिए भी क्या कुछ फीचर्स ऐड किए हैं कि जो हमारे सही तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ ना हो।
1: हमने किसी को भी एडिट राइट नहीं दिए हैं, तो एडिट राइट्स अभी फिलहाल सिर्फ मेरे पास ही हैं। तो कोई भी सुझाव आते हैं, कोई भी हमको करेक्शंस आते हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस आते हैं, तो मैं अपने सोर्सेज जो हमने बुक्स की जो सोर्सेज गैदर की हैं, जो आपको हमारे वेबसाइट के सोर्सेज के टैब में भी मिल जाएंगी, उसके अगेंस्ट मैं मेजर करता हूं। अगर वो सोर्स में होता है तो ही मैं उसको इनकॉर्पोरेट करता हूं। पूरा वेबसाइट का कंटेंट है, मैं अकेले अपने कंप्यूटर से उसको अपलोड करता हूं। ये कहीं इंटरनेट में या कहीं ऐसे जगह नहीं है जहां पे आके लोग उसे हैक कर सके। तो इसके लिए जितना मैंने ये वेबसाइट को सिंपल बनाया है। और रही बात सिक्योरिटी या चोरी करने की डेटा की, तो मैंने ये जो वेबसाइट है ये ओपन सोर्स कर दिया है, फ्री कर दिया है, तो अगर कोई भी जाके मेरे वेबसाइट से वो मेरा जो भी सारा डेटा है वो डाउनलोड करके अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकता है। क्योंकि मैंने जब ये वेबसाइट बनाया तो मुझे ये लगा था कि हमको कभी अपना जो नॉलेज है, अपनी जो भारत की इतनी वास्ट नॉलेज का जो हमारी रिपोजिटरी है, वो हमेशा सबको ओपन होनी चाहिए। इट हैज टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और हम वो नहीं कर सकते अगर हमने उसमें कुछ या पे वॉल लगा दिया या उसको पैसे लेके उसको एक्सेस दिया, तो ये जो वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव है टू मेक हिस्ट्री फन टू एवरीवन, वो फेल हो जाएगा। इसके लिए मुझे सिक्योरिटी की कोई डर नहीं। अगर कोई तोड़ के डेटा ले भी जाए तो वो अच्छा ही है, क्योंकि मैं उसे बस विश करूंगा कि इससे भी अच्छा और वो वेबसाइट बना दे। तो अगर आप जब भारत राज्य के वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे एक करेक्शंस करके एक टैब होगा, तो अगर वो आप करेक्शंस के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको दो टाइप के सजेशंस आप हमें दे सकते हो। एक है कि अगर हमें कोई फीचर्स चाहिए, जैसे हम बहुत लोग ने मन की बात प्रोग्राम के बाद बहुत लोगों ने ऐसा सुझाव दिया कि ये वेबसाइट को आप रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल करो, तो वो टाइप के फीडबैक भी हम आप दे सकते हो। और अगर दूसरी टाइप का फीडबैक ये है, अगर आपको लगता है कि इस प्रदेश में जो हमने मार्क किया है ये जो रूलर है वो गलत है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल तक के करेक्शंस भी आप हमें पहुंचा सकते हो। इट इज अ वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।

0: टैब, और आप उसमें जैसे ही सबमिट करेक्शन सबमिट करोगे वो हमको मेल में आता है, हम उसे रीड करते हैं, अगर वो सोर्सेस के साथ वेरीफाई होता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. क्योंकि करेक्शंस की इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने 1000 डिस्ट्रिक्ट को कम से कम 1500 साल पे मैप किया है. इसका मतलब है हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 1000x1000 टाइम्स एंट्री आपको मिलेगी. तो और हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम गलतियां करेंगे, और इस गलती को हमको सबको मिलके सुधारना है. क्योंकि इंडियन हिस्ट्री ऐसी चीज है जो एक आदमी या एक वेबसाइट की बस की बात नहीं है, ये हम सबका एक वेबसाइट है, और हम सबको मिला के सामूहिक योगदान से ही हम इसके एंट्री को और एक्यूरेट बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, ताकि अगले कुछ सालों तक ये हिस्ट्री लर्निंग को मजेदार बने.
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर. मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे.
0: सो दिस इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू माई वाइफ. ये हमारी दोनों की फेवरेट मूवी तारे जमीन पर से है, और वो जो गाना है खोलो खोलो, तो ये हमें बहुत दोनों को बहुत पसंद है, एंड ये एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग है.
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं.

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। कृष्णा जी, ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के दौरान आपकी जो सबसे बड़ी सीख थी वो क्या रही और शुरुआती दौर में कैसी चुनौतियां थी?
1: बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न्ड इन दिस एक्सपीरियंस इज बिल्डिंग थिंग्स, कि अगर आप कुछ चीज बिल्ड करते हो और अगर एक चीज क्रिएट करते हो, उसमें जो आपको मजा आता है वो और किसी चीज में नहीं आता। तो जब आप एक चीज आप देखते हो, एक वेबसाइट जो नहीं है, देन इट स्लोली कम्स टुगेदर एंड देन फाइनली एक विजुअली वो आपको दिखता है, जो आपको जॉय और वो एंजॉयमेंट आता है, इट आई डोंट थिंक देयर आर वेरी फ्यू एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड व्हिच आई थिंक प्रोबेबली मैच इट।
0: मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमारे जो दृष्टि बाधित साथी होते हैं, हम देखते हैं अक्सर कि वो पठन पाठन में बेहद रुचि लेते हैं और साथ ही बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऐसे में वो नए नए माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए, नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी वेबसाइट पर क्या स्क्रीन रीडर जैसी सुविधा है ताकि दृष्टि बाधित साथी जो हैं वो भी आपकी वेबसाइट से जुड़ सके?
1: ये एक्चुअली आपने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि ये जो है भारत राज्य जो है एक विजुअल मीडियम का वेबसाइट है। इसमें हम विजुअली इंडिया के मैप को दिखाते हैं, इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, और अगर हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर भी दें तो एज अ स्क्रीन रीडर हो या जो तकनीक है वो वेबसाइट उनके लिए ऑप्टिमम एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। लेकिन हमने थोड़े कुछ फीचर्स डाले हैं, तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है या किसी को और कुछ है तो वो हमने कलर ब्लाइंड मोड इम्प्लीमेंट किया है ताकि वो भी ये वेबसाइट को एंजॉय कर सके।
0: जब आपने वेबसाइट डेवलप की तो उस दौरान बहुत सारे इतिहासकारों, शोधकर्ताओं या फिर कंटेंट राइटर्स के साथ आपका मिलना जुलना हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, तो ये बताएं कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे उन्हें समझाई और कहीं इसमें तकनीक तो कोई बाधा नहीं बनी?
1: एक बात मैं अभी सच्चाई में बताता हूँ कि मैंने ये कंटेंट रिसर्च है, ये जो कंपाइलेशन है, ये मैंने अकेले में किया है। लेकिन मैं कभी जिंदगी में ये नहीं भूलूंगा कि मैंने अकेले में किया है, क्योंकि आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। द एंटायर कंटेंट, द एंटायर मैपिंग, जो भी आप देख रहे हो भारत राज्य में डिस्ट्रिक्ट में किसने काम किया, ये मेरे से बहुत ही बड़ी हस्तियों ने, बहुत ही बड़े हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगियां डेडिकेट की हैं और उसमें से ऐसे किताबें लिखी हैं जिसमें सब कुछ क्लियर है। जैसे हमारे जो सोर्सेस हैं, सबसे बड़े सोर्स जो है वो आरसी मजुमदार जी हैं, जिनके ऑलमोस्ट 10 से 11 वॉल्यूम हैं, जो इंडिया के वैदिक एज से लेके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तक सारी चीजें कवर करती हैं। फिर हमने नीलकंठ शास्त्री, जिन्होंने साउथ इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। जादूनाथ सरकार जी, जिसने फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे इतने अच्छी किताबें लिखी हैं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कि इट इज अमेजिंग द डिटेलिंग दैट दे हैव गॉन थ्रू। और बहुत सारे और भी ऑथर्स हैं, जैसे एक ऑथर थे जिसने सिर्फ राजपूतों पे, राजस्थान पे 5 वॉल्यूम लिखे हैं। एक एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट तक उन्होंने कवर किया है कि कब क्या हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, युद्ध में कौन सी टेरिटरी इधर से उधर गई। तो मैंने ऐसा नहीं समझा है कि मैंने अकेले में काम किया है। आई हैव ओनली रेफरेंस्ड एंड आई हैव ओनली यूज्ड द वर्क्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक मजुमदार, जादूनाथ सरकार जी, नीलकंठ शास्त्री एंड ऐसे और एंड सो मेनी मोर ऑथर्स, और बिकॉज ऑफ हुम दिस वेबसाइट इज अलाइव टू।

0: मैंने ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कोई टीम ऑफ हिस्टोरियंस है, बट मेरे पास इन जैसे महान दिग्गज हिस्टोरियंस का आशीर्वाद था, जिसके वजह से आज ये भारत राज्य जो वेबसाइट है वो लाइव है।
1: जब प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हो रही थी, उस वक्त आपने उनसे कहा था कि हम इतिहास को रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो इस बारे में आपके और क्या विचार हैं? एक प्रयास तो आप कर चुके हैं, आपको क्या लगता है हमें अपने बच्चों को अपना इतिहास, अपना गर्व कैसे बताना चाहिए?
0: जो आज हम इतिहास स्कूलों में पढ़ाते हैं, या बहुत सारे जो नौजवान हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको ये एक सोर्स ऑफ विजुअल हिस्ट्री है, और अगर ये देखेंगे तो और हिस्ट्री या इतिहास को और अच्छे से वो याद रख सकते हैं। हम वो ही एंगल से इस वेबसाइट को नियर फ्यूचर में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, हमारे वेबसाइट में एक फीचर है ट्रम्प कार्ड का, तो हम सब जब बच्चे थे तब हमने WWE के या क्रिकेटर्स के ट्रम्प कार्ड के साथ बहुत एंजॉय किया है, और आज भी हमको बहुत सारे जो डेटा है वो ट्रम्प कार्ड के वजह से याद है, और हमने ये वेबसाइट में इतिहास के ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं, हर एक एम्पायर के, हर एक किंगडम के हमने ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं। तो अगर वो ट्रम्प कार्ड बच्चे रेफर करें या बच्चे यूज करें, तो उनको इतिहास मजेदार ही नहीं रहेगा, याद भी रहेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि हम हिस्ट्री को एक स्टोरी बनाएं, और अगर हम स्टोरी की तरह सब बच्चों को ये इतिहास पढ़ाएं, तो वो इतिहास उन्हें याद तो रहेगा ही, बट वो उसे वैल्यू भी करेंगे।
1: हो सकता है कि हमारे न्यू डेवलपर्स इस समय आपको सुन रहे हो, हमारे ऐसे साथी, हमारे ऐसे श्रोता जो अपनी कोई वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप जरा उनके लिए बताएं, क्या सलाह आप देंगे उन्हें, क्या क्या फीचर्स अपनाने चाहिए और कैसे तैयारी करें?
0: इफ एनीवन वांट्स टू बिल्ड एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी छोटी वेबसाइट हो सकती है, कुछ बड़ा भी प्रोजेक्ट हो सकता है, माई ओनली रिक्वेस्ट टू देम इज आप उसके अंदर जाइए, बिल्ड करना चालू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बिल्ड करोगे वो आपके अंदर अच्छा एहसास होगा, यू विल फील बेटर, एंड देन यू विल नॉट ओनली बिकम अ बेटर बिल्डर बट यू विल ऑल्सो बिकम अ बेटर ह्यूमन। ये जरूर बोलूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात इनिशिएटिव है, इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग एंड अ मोटिवेटिंग इनिशिएटिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई जरूरत नहीं थी ये वेबसाइट के बारे में जाके मुझसे बात करने, बट उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, मेरे से बात की, वो वेबसाइट में है। इससे बड़ा मोटिवेशन एक फॉरगेट टेक पर्सन किसी को भी नहीं हो सकता। और ये मन की बात जब हो गई तो इसमें मुझे एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आया, एक रिन्यूड एनर्जी आई है, जिसमें से मैं इस भारत राज्य को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊं, और भी ज्यादा पीछे टाइम में जाऊं, जितना भारत का इतिहास है उसे कवर कर सकूं, और इसे एक ऐसा वेबसाइट बनाऊं जो आगे इतिहास के लिए सबसे ज्यादा यूज्ड वेबसाइट हो। तो ये मोटिवेशन मन की बात के साथ आया है, और सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका रिकॉग्निशन मिलेगा। ये मुझे मन की बात के ये प्रोग्राम के थ्रू, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसंस आई हैव लर्नड।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी, यहाँ इसी मोड़ पर मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: तो ये गाना मेरे जो बॉस हैं सुरेश कुमार सर, आनंद सर और राजेश सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये उनका एक वन ऑफ देयर फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इज फ्रॉम आई थिंक मूवी हम दोनों, द सॉन्ग इज मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
2: Even now when I see myself on the screen, I rarely gag about myself. I'm a very great critic of myself. I may not say so to the world, but because I'm a very healthy sign, because you are in constant process of improving and progress. And that's a very, very great sign for any worker in any field, which is creative.

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। यहाँ आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कृष्णा जी, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे ऐतिहासिक पात्र हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके फेवरेट पात्र कौन से हैं, आप किन पात्रों से ज्यादा प्रभावित हुए हैं?
1: अब तो वेबसाइट पूरा बनाए तो सारे पात्र से प्रभावित हुए, बट माई फेवरेट इज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, माई फेवरेट इज द ट्रम्प कार्ड सेक्शन। क्योंकि अगर हमने अलग अलग टाइम के, अलग अलग टाइम पीरियड्स के, अलग अलग एम्पायर्स के कार्ड प्रिंट करके हमने हमारे बच्चों या हमारे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उनके थ्रू वो हिस्ट्री पढ़ाना मजेदार बना सकते हैं और उनके बच्चों के बीच में वो एक खुद ही में एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है, जो वो समर में या कभी भी जब उनको टाइम मिले तो खेल के ना ही वो रिलैक्स कर सकते हैं बट इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट के थ्रू जो है आपको आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। अगर आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप रायगढ़ पे क्लिक करोगे तो 300 CE से आज तक रायगढ़ में किस किस लोगों ने राज किया, कितनी बार वो जिला हाथ बदला, कितने राजा आए, कितने राजा गए, ये सब का आपको एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो ही नहीं, आपको और भी आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे उसका पॉपुलेशन क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, उसमें कौन से क्रॉप उगते हैं, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन से मंदिर हैं, कौन से आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सबकी लिस्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। वो भी आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हो। कैन टेल यू अ फनी इंसिडेंट रिगार्डिंग दिस। किसी कलीग को दिखा रहा था तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा जिला कौन सा है, जहां से तुम हो तो उस जिला का नाम बताओ, तो उसने रायगढ़ बताया। तो हमने रायगढ़ पे क्लिक किया तो रायगढ़ में अराउंड 1100-1200 के टाइम पे एक शिलाहारास करके एक जो डायनेस्टी थी वो रूल करती थी। तो वो उसने देखा और उसने बोला कि मेरा जो सरनेम है वो शिलाहारा है। तो वो उसी को नहीं पता था कि वो एक जमाने की राज परंपरा से था।

0: टेक्नोलॉजी विल बी सोफिस्टिकेटेड इनफ वेर आप घर बैठे बैठे कैलाश टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते. तो ऐसे बहुत सारे फीचर डाल सकते हैं जहां पे लोग घर बैठे बैठे या वो मॉन्यूमेंट में ही वो मॉन्यूमेंट के बारे में जाने और उसको एंजॉय करें. अभी तो फिलहाल 3D मॉडलिंग तो हमने नहीं की, हमने तो एक सिंपल ओवर 2D मैप ओवर लेआउट में हमने एक टाइमलाइन किया है. जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे आगे बढ़े हम ऐसा भी कुछ करें कि भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उसको हम एक 3D मॉडल बना के वेबसाइट में होस्ट करें ताकि लोग वहां पे 3D के थ्रू उस मॉन्यूमेंट्स को एक्सपीरियंस कर सके. ये एक फीचर है जो हमने पाइपलाइन में रखी है, जल्दी में वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे. कोलैबोरेशन से हमारा जो एक्यूरेसी है, ये जो एनरिचमेंट ऑफ डेटा है, ये कोलैबोरेशन से आगे बढ़ेगा. बट हाउ आई विजुअलाइज दिस वेबसाइट एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर इज एन एजुकेशनल एड.
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड पर. मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे.
0: दंगल टाइटल सॉन्ग है वो.
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं.

0: जंगल दंगल।
1: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आधारित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को बड़ोदरा में महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय ने साफ किया है कि भारत के चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु द्वारा दी गई जानकारी, तथ्यों और दस्तावेजों की ठीक से जांच कर ली गई है। एक प्रेस नोट में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने कहा कि डॉ. संधु की वोटर लिस्ट एंट्री को मंजूरी दे दी गई है और इसे विधानसभा क्षेत्र 38 दिल्ली कैंट की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बरकरार रखा गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। रूस में यह नया हमला ऐसे समय हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू. वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड. गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ.

फिल्म असली नकली से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। 1962 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। देवानंद, साधना, लीला चिटनिस, अनवर हुसैन, संध्या रॉय और केस्टो मुखर्जी ने इस फिल्म में अभिनय किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही थी। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म का नाम नीलकमल और आवाज़ थी रफ़ी साहब की, संगीत रवि का, और ये फिल्म आई थी 1968 में, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार और ललिता पवार ने। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

आशा जी की आवाज़ में सुना आपने ये सदाबहार गीत फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से, और इस फिल्म का संगीत दिया था हेमंत कुमार ने और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था अबरार अल्फी ने, निर्मित गुरुदत्त साहब ने किया था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, मीना कुमारी, रहमान, वहीदा रहमान। और ये फिल्म 1956 की बंगाली फिल्म साहिब बीवी और गुलाम की रीमेक थी और जो बिमल मित्रा के उपन्यास पर आधारित थी। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म लव इन टोक्यो से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वादिष्ट मिला वीक मेगा हर्ट्स पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ. मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू. वक्त हुआ है 1:41 और 21 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने. अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में.

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत. फिल्म का नाम परवरिश और संगीत था दत्ताराम वाडकर का और गीतकार थे हसरत जयपुरी. ये फिल्म आई थी 1958 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था शानू बनर्जी ने. फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, माला सिन्हा और महमूद ने. अगला गीत तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज़ में.

फिल्म बाबुल से सुना आपने ये गीत शमशाद बेगम और तलत महमूद की आवाज़ में। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत था नौशाद साहब का। ये फिल्म 1950 में आई थी और ये इस फिल्म को निर्देशित किया था एस यू सनी ने और नौशाद साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के अलावा इस फिल्म का म्यूज़िक भी दिया था और अहम रोल इसमें निभाया था दिलीप कुमार नरगिस मुनव्वर सुल्ताना ने। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही और 1950 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। गीत अगला गीत अब तक पहुँच रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ में। फिल्म का नाम गजल।

0: छोड़ी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। SIR से पहले के 13,97,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं की अनुपस्थिति कहीं और चले गए या अन्य श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सर्विस वोटर सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हैती में चल रही लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरिबियन देश को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी रेडिंग क्विनोस ने के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि FBI और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले

तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था, तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था, तो मैंने जाना कि दो शहरों की दूरी सिर्फ हाथों को थाम लेने भर से कम हो जाती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 3 सेकंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस सुरमई प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

वादे तो हम सभी करते हैं, कोई अपने दोस्त से करता है, कोई अपने पेरेंट्स से करता है, और कभी कभी हम खुद भी अपने आप से करते हैं। लेकिन जो वादे आंखों ही आंखों में किए जाते हैं, उनकी बात ही कुछ अलग होती है ना। अगर इस गाने को सुनकर आपको भी किसी की याद आई हो जिससे आपने आंखों ही आंखों में वादा किया था, तो ये अगला गीत उसी के लिए।

प्यार में जब हम चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो एक खूबसूरत और एक अच्छा सा जो जहां होता है वो अपने आप बनता चला जाता है. प्यार में साथ चलने साथ साथ चलने से रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं और हम अच्छी मंजिलों की तरह की तरफ बढ़ने लगते हैं. और हम प्यार में ना सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें सामने वाले को जो हमारे लिए ख़ास है उसे ये बताना भी होता है कि तुम मेरे लिए ख़ास हो. सिर्फ गानों से काम नहीं चलता. तो अगली बार जब भी आपकी मुलाकात ख़ास इंसान से हो तो उसे बताना भी है कि वो उसकी ज़िंदगी में कितना ख़ास है. अगला गीत रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में, आप ही के लिए. ना ना ना.

जब बागों में बाहर है तो फिर स्टूडियो में क्या होना चाहिए? स्टूडियो में होना चाहिए मीठी मीठी बातें और प्यार भरे गाने जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और उम्मीद है आपको पसंद भी आ रहे होंगे। जब इस गाने को सुनकर किसी ख़ास इंसान की याद आ ही गई है तो फिर उस तक बाहर पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये अगला गीत आप ही के लिए।

उठकर तो आ गए हैं तेरी बज्म से मगर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। एक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:40 और 15 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। रात के कितने रंग होते हैं, कभी वो उदास होती है, कभी खुश होती है, जिंदगी की तरह। और अगला गीत आप तक लता मंगेशकर की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

कभी आपने रात की उदास चिट्ठियां पढ़ी हैं? मैंने पढ़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये उदास चिट्ठियां कभी भी अपने सही पते पर नहीं पहुंचती। ये श्राप है इनको, इनके हिस्से में सिर्फ भटकना ही आया है, जो दूर से देखने में अच्छी लगती हैं, चमत्कार भी लगता है, रोशनी भी लगती है, और जो अपनी ही रोशनी से इनका दम घुट जाता है। तो अगली बार जब भी आपको रात की चिट्ठी मिली तो उसे उसकी रोशनी से नहीं, उसके अंधेरे से समझने की कोशिश करना। अगला गीत आप ही के लिए।

अभी तो बताया मैंने अपना नाम आपको. रात की चिट्ठियों में इतना नहीं खोना होता कि मुझे ही भूल जाओ. मैं आपकी रात की हम सफ़र, जहाँ जुड़ते हैं हम दिल से दिल तक. और ना जाने इस साथ के साथ इस सफ़र में कितने कस्में वादे हम बिना कहे निभाते चले जाते हैं. अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ पे.

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही. बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी. अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार. 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी मीना चौहान. मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। SIR से पहले के 13,97,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं की अनुपस्थिति, कहीं और चले गए या अन्य श्रेणियों में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें सर्विस वोटर्स सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हेती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरेबियन देश को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी रेडिंग क्विनोन्स ने के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि FBI और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका इस मामले में कई अन्य संदिग्धों पर मुकदमा चला रहा है और उन्हें सजा सुना रहा है। मौसम विभाग ने उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानानंद और डी गुरकेश ने अनीश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 3:11 और 4 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।
1: यूं ही तुम मुझसे

नजरों की भाषा भी बड़ी कमाल की होती है बिना कुछ कहे ही दिल की सारी बात कह जाती है तो आइए सुनते हैं प्यार की इन्हीं हसीन इशारों से सजा कश्मीर की गली का ये सदाबहार गीत

जानते हैं दोस्तों, यादों की भी एक अलग दुनिया होती है, जहां कोई दूर होकर भी हर पल हमारे पास रहता है। कभी किसी अपने की हंसी याद आती है, कभी साथ बिताए पल, और कभी बस यूं ही दिल कह उठता है कि तुम होते तो कितना अच्छा होता। इसी इंतजार और किसी अपने को फिर से पास बुलाने की खूबसूरत चाहत के साथ सुनते हैं फिल्म चरस का ये गीत। सबसे बड़ा

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 3:26 और 33 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है हमराही और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

जानते हैं दोस्तों, प्यार जब दिल में उतरता है ना, तो हर धड़कन किसी अपने को पुकारने लगती है। कभी ये पुकार शब्दों में होती है, कभी आंखों में, और कभी किसी गीत के सुरों में। इसी मासूम पुकार और प्रेम की खूबसूरत अनुभूति को अपने सुरों में समेटे हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, जब किसी को अपना मान लेते हैं ना, तो दिल की दुनिया भी उसी के नाम हो जाती है। फिर उसकी खुशी में, अपनी खुशी और उसकी मौजूदगी में अपनी दुनिया नजर आने लगती है। इसी मासूम प्रेम और अपनेपन के एहसास को खूबसूरती से बयां करता फिल्म मिलन का ये गीत।

दोस्तों, किसी रिश्ते की असली खूबसूरती तब सामने आती है जब हालात बदल जाए, दूरियां बढ़ जाए, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कम ना हो। वफा वही है जो वक्त की कसौटी पर भी अपने आप का अपनेपन का एहसास बनाए रखे। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, निभाए गए वादों से पहचाने जाते हैं।

शीशा हो या दिल, दोनों ही नाजुक चीजें हैं और दोनों की अपनी एक नाजुक दुनिया होती है। एक टूट जाए तो टुकड़े दिखाई देते हैं और दूसरा टूटे तो दर्द दिखाई नहीं देता। इसलिए रिश्तों में प्यार के साथ थोड़ी सी संभाल और बहुत सारा अपनापन भी जरूरी है।

दोस्तों आज के दौर में बात पल भर में पहुंच जाती है, लेकिन कभी खत का इंतजार भी मोहब्बत का एक खूबसूरत हिस्सा हुआ करता था। कागज पर लिखे हर शब्द में अपनेपन की खुशबू होती थी और जवाब का इंतजार दिल को बेचैन भी करता था और खुश भी। उसी दौर की मीठी याद लिए सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने

0: के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर के पहले से 13,57,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए थे। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए मतदान कल रात समाप्त हो गया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का कोई विरोध नहीं था और क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना लगभग तय है। 3 दिन तक चले इस चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेनी सेना ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों मॉस्को की ओर भेजे गए थे। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि वोटिंग खत्म होने तक मतदान का प्रतिशत 56.66% रहा। हेती के राष्ट्रपति जेवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हेती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरेबियन देशों को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी रेडिंग क्विनोन्स के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि एफबीआई और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका इस मामले में कई अन्य संदिग्धों पर मुकदमा चला रहा है और उन्हें सजा सुना रहा है। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानानंद और डी गुकेश ने अनीश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की, जिससे भारत ने नीदरलैंड पर 3-1 से जीत पक्की कर ली है, लेकिन भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. President Draupadi Murmu has said, the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening. President Murmu said, climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 4:11:05। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह के इस सुहाने पहर में जब एक नई सुबह धीरे धीरे दस्तक दे रही है, तो क्यों ना शुरुआत की जाए एक खूबसूरत एहसास के साथ। फूलों की खुशबू की तरह कुछ यादें भी मन को ताजगी से भर देती है और किसी अपने की याद दिला जाती है। तो आइए प्यारी सी सुबह की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

मिलने का इंतजार जब खत्म होता है ना, तो वो पल अपने आप में एक छोटी सी खुशी बन जाता है। अपनों से मिलने की खुशी में जैसे समय भी कुछ पल के लिए ठहर

फूलों की तरह खिलती हुई मुस्कान किसी भी सुबह को और खूबसूरत बना देती है। किसी अपने की एक मुस्कुराहट में वो जादू है जो बिना कुछ कहे दिल का मौसम बदल देता है। तो आइए इसी खिलखिलाते एहसास के साथ सुनते हैं ये गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:26 और 16 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों दूरियां कभी-कभी मन को बहुत बेचैन कर देती है। तब दिल बस यही चाहता है कि काश कोई ऐसी राह होती जहां रास्ते और फासले मायने ही ना रखते और हम बिना देर किए अपने प्रिय तक पहुंच जाते। इसी प्यारी सी ख्वाहिश को आवाज देता ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, जिंदगी भी एक सफर है और इस सफर में कई बार हम खुद से ही पूछ बैठते हैं कि आखिर जाना कहाँ है, कौन सी राह हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन शायद यही अनजानी राहें और छोटे छोटे पड़ाव जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। तो आइए सफर और मंजिल की इसी प्यारी सी बात को सुनते हैं इस गीत में।

दोस्तों प्यार की बातें भी बड़ी अजीब होती है किसी को देखते ही दिल की धड़कन बन जाए मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाए फिर भी जुबान कहे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं इसी भोलेपन और चुलबुले अंदाज के साथ सुनते हैं फिल्म शागिर्द का ये गीत

मोहब्बत में नोक झोंक ना हो तो फिर प्यार में वो मिठास कहां कभी कोई रोटता है कभी कोई मनाता है और इसी बहाने प्यार की बातें भी हो जाती हैं बस डर यही रहता है कि कहीं ये शरारतें दुनिया की नजरों में ना आ जाएं

जब दिल में किसी के लिए प्यार होता है ना, तो उसे छुपाना भी कहाँ आसान होता है। दिल चाहता है कि पूरी दुनिया को बता दें कि हमारे लिए सबसे खास कौन है और ये एहसास कितना खूबसूरत है। इसी बेझिझक प्यार की मीठी सी पुकार के साथ सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं इस गीत के साथ ही मीना चौहान को अरुणिमा कार्यक्रम से दीजिए इजाजत नमस्कार थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें

दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस स्ट्रीट केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर से पहले के 13,57,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं को अनुपस्थित, कहीं और चले गए या अन्य श्रेणियों में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कल मसौदा मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें सर्विस वोटर्स सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अयोध्या नगरी अब धार्मिक, पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से अयोध्या में विकास के नए दौर की शुरुआत हुई है और ये नगरी एक बार फिर सनातन धर्म के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए मतदान कल रात समाप्त हो गया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का कोई विरोध नहीं था और क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना लगभग तय है। 3 दिन तक चले इस सप्ताह के आखिरी दिन यूक्रेन की सेना ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों मॉस्को की ओर दागे गए थे। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हैती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 7 सेकंड। भोर सुहाने कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, किसी खूबसूरत चेहरे की तारीफ करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि खूबसूरती को शब्दों में बांधना भी मुश्किल होता है। कभी किसी की मुस्कान दिल जीत लेती है, कभी किसी की आंखों की चमक भा जाती है, और कभी किसी की एक झलक ही इतनी खास होती है कि तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं।

संगीत की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। सात सुर जब मिलते हैं ना, तो कभी खुशी बनकर चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, कभी किसी पुरानी याद का दरवाजा खोल देते हैं और कभी दिल की ऐसी बात कह जाते हैं जिसे हम शब्दों में नहीं कह पाते हैं। सारे गामा पाधा निसा, ये सिर्फ सात सुर नहीं बल्कि भावनाओं की एक पूरी दुनिया है। इन्हीं सुरों से सजे गीत हमारी जिंदगी के अलग अलग रंगों को आवाज देते हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:26:42 कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।